मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो, मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो, वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो, माज महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो, आवो संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो, वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्व जूनी नित पौदा जियो, आप दयाल दया प्रवतारी, मल हो मैं बिख्या सब निवारी, नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा, हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पी चै जियो, सतगुर दाते नाम दृढ़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत ली चै जियो, हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए, नानक हर कथा सुन।

तिसके हौवारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हौ सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हौ सतगुर विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौप दे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे कर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चा त्रिकी न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी पांच सौ देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हौ कोली हौ कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर मैं पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदय तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निद तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आते तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते।

तू प्रीतम ठाकुर अथ पारी, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन कह, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो, तुमरी कृपा ते हुए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई।

जियो सदा सदा तू है सुखदाई निव निव लागा तेरी पाई सार कमावा जे तुद पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे बेकुंठ सिथाई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ।

जल थल मैयल दैदिश्वर साया, सांत पल बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आते बख्श करे जी सारा, अपने की तेनो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जा की शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये, तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाए जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाज लगी लिव अंकर, सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथी दिती प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते है, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा खान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे, अपने संतानो आप सहाये, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच चित आई है, सो रिदा सुहेला जित भर गुण गाई है, सा तर्क सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो। सत वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सत शब्द मन मानो जियो। सत सलाहन बड़ पादी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच त्याई।

जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभु साथे, तै पाओ परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभु समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे साधर वाला, देह दान ना।

साते तुद बिन अवर न कोई करते मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया इकत दिन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा मन तन रत्ता राम प्यारे सर्व सुख दीजे अपना वारे आठ पैर गो

साधु संग तरी जय सागर कटिये जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलग अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर परवान ग्रस्त उदासा जियो। माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया बिन से आलस रोगा जियो। जां कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन में थाप उठापन हारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए परगासा।

झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाय जिस सिमरत वर ने चल पाई, नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया महला पहला कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सबद सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा। हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने सबना का दर लेखा सके छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच न

ते सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावनिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवै दिन राती मजीथे रंग बनावनिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावनिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावनिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए पगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावनिया आप उपाय संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावनिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया।

प्रीत सदा त्याय है पै पाए भगत दृढ़ावण्या। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे। सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावण्या। हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद है सेवी तै तुद सलाही। आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावण्या। मैं होर न कोई तुद है जेहा तेरी नदरी सीजस देहा। अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख सह समावण्या। तुद जेवड़ मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई। तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावण्या। माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा। अलख वरते अगम अपारा गुर कै शब्द मेरा हर प्रभ त्याय सहजे सच समावण्या। हौ वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावण्या। शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावण्या। रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे सुध ना सारा। गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावण्या। एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते। मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावण्या। एकम एक है आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया। चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावण्या। सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे। गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावण्या। सच्चे बाजों को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ। गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावण्या। जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तार देखे कच्ची पक्की सारी। अंग दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावण्या। तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर। नानक आपे आप वरत गुरमुख सोजी पावण्या। माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी। अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावण्या। हौ वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावण्या। सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावण्या। रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया। तुझ सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावण्या। एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया। गुर कै शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावण्या। रतन पदार्थ पलर त्यागे मनमुख अंधा दूजे पाए लागे। जो बीजे सोई फल पाए सुपने सुख न पावण्या। अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन वसाए। अंदिन सदा रह पै अंदर कै मार परम चुकावण्या। परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया। अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावण्या। सिमरत शास्त्र वेद वखाणे परमे पूला तक न जाने। बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखो दुख कमावण्या। आप करे किस आखे कोई आखन जाइए जे पूला होई। नानक आपे करे कराए नामे नाम समावण्या। माज महला तीजा आपे रंग हर रंग चढ़ाए मन तन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावण्या। हौ वारी जियो वारी निरपौ मन वसावण्या। गुर कृपा से हर निरपौ त्याया बिख पौजल शब्द करावण्या। रहाओ मनमुख मुग्ध करे चतुराई नाता तोता थाए ना पाई। जेहा आया तेहा जाती कर अवगण पछो तावण्या। मनमुख अंधे किछु न सूजे मरण लिखाए आए नहीं बूझे। मनमुख कर्म करे नहीं पाए बिन नावे जन्म गवावण्या। सच करनी शब्द है सार पूरे गुर पाई है मोख द्वार। अंधिन बाणी शब्द सुनाए।

सच राती रंग रंगावनिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सहज सुभाए। सहजे पीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावनिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहजे सुख समावे। हों बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावनिया। सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पीजे। बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावनिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो में जाए। नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावनिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जियो सफलियो बिरख है अमृत। जिन पीता तिस तिखा लहावनिया। हौ वारी जियो वारी, सत संगत मेल मिलावनिया। हर सत संगत आपे मेल है, गुर सबदी हर गुण गावनिया। रहाओ सतगुर सेवी सबद सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया। हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे सोबा पावनिया। बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिल लाए। बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावनिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे। अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावनिया। बिन सतगुर क्यो ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए। आपे आप मिल रहा, सहजे सहज समावनिया। गुरमुख हो वैसो इक क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए। काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावनिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार। अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावनिया। सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया। नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावनिया। माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किच पाए। गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वनन जय सच संग्रह, सच वा पार करावनिया। हो वारी जियो वारी, हर गुण अंदिन गावनिया। हो तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवनिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया। सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावनिया। पाओ भोजन सतगुरु तुठे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए। सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावनिया। सतगुर ना सेवे मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाए मोख द्वारा। मर मर जमे फिर आवे, जमदर चोटा खावनिया। शब्द है साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने। सच्चे सेव सदा सुख पाएन, नौनिद नाम मन वसावनिया। सो थान सुहाया, जो हर मन भाया। सत संगत बह हर गुण गाया। अंदिन हर साला है साचा, निर्मल नाद वजावनिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, पूर कमावन दुख लागे पारा। परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन में जन्म गवावनिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा। नानक नाम मिले वड्याई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी। बिन नावे सब परम पुलाणी। गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावनिया। हौ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावनिया। हर सच्चा गुर भगती पाईए, सहजे मन वसावनिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए। जे ही मनसा कर लागे, तेहा फल पाए। सतगुर दाता सबना वथू का, पूरे पाग मिलावनिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए। तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हो मैं मल लावनिया। सतगुर सेवे ता मल जाए।
जीवत मरे हर स्यो चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावने। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावने। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, होमे ममता सबदे खोवे, अन दिन हर जियो सच्चा सेवी, पूरे पाग गुर पावने। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावने। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंकर पछाणो, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावने। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे सबद राचे, सच्चा सेवें सच कमावे, सच्चो सच कमावने। हौ वारी जियो वारी, सच्चा नाम मन वसावने, सच्चे सेवें सच समावे, सच्चे के गुण गावने। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई, कर अवगुण पछोतावने। सतगुरु मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावने। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उधारे, सच रते सदा बैरागी, होमे मार मिलावने। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविद मनसा त्रिविद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावने। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अथ पारा, हर रस रस गुण गावने। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावने। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पथ सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावने। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावने। हौ वारी जियो वारी, गुर पूरा मन वसावने, गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावने। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पानी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडानी, सो निगुरा जो मरमर जमे, निगुरे आवन जावने। तिन करते इक खेल रचाया, ताया शरीर है विच सब किछ पाया, शब्द पेद कोई महल पाए, महले महल बुलावने। सच्चा साओ सच्चे वन जारे, सच वनन जय गुर हेत अपारे, सच विहा जय सच कमावे, सचो सच कमावने। बिन राशि को वत क्यों पाए, मनमुख पूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावने। एक सच वनन जय गुर शब्द प्यारे, आप करे सगले कुल तारे, आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावने। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मनमुख अंधे फिरे बेताले, जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे, मनमुख परम कुलावने। आपे देवे शब्द बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे सुन सुन प्यावने। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर केतो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी, सतगुर कह पाए पावने। हौ वारी जियो वारी, आप निवारणिया, आप गवाए ता हर पाए, हर स्यो सहज समावने। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन पागा गुर पाई नाही, शब्द मेल मिलावने। गुरमुख अलिपत रह संसारे, गुर के तकिए नाम आधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावने। मनमुख अंधे सुध न काई,
आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावणिया। एहो जगवाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए तेही वरते, वासु वास जनावणिया। मन मुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे, बिन गुर सांत न पावणिया। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुकम पछाणे, जेहा अंदर पाए तेहा वरते, आपे बाहर पावणिया। तिस बाजों सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लय सो निर्मल होई, नानक नाम वसै कट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख दवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावणिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आप सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पियावणिया। सो किछ करे जो चित न होई, किस दा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे, त्यो मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी क्यों चित लाए, अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आप उपाय, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी शब्द सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत की आवणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब खुख ले जावणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पियावणिया, रसना रस चाख सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक क्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सदना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कणेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रता, अमृत सह सुनावणिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सबद सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हौ वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्याएन से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया।

गुर के सबद सदर है समाए सच सलाहे सब खट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के सबद रहा पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहा समाए सदा सच निश्चल आवे न जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहे समाणी निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हों वारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर सब सलाही सबदो सुन पिसा मिटावणिया रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अस निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे होमे मैल गुर सबदे तोवे निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी दर सच्चे सोबा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे निर्मल नाम लगे बड़ पागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल जो सबदे सो है निर्मल नाम मन तन मोह सच नाम मल कदे न लागे मुख उजल सच करावणिया मन मैला है दूजे पाए मैला चौका मैले छाए मैला खाए फिर मैल वधाए मन मुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सवाए से निर्मल जो हर साचे भाए नानक नाम वसे मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सोहे अत उजल नाम ते आवणिया हौ वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कहे दिन राती गोविंद गुण शब्द सुहावणिया रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए गुर कै पै उजल होमे मल जाए सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत करावणिया ऊंचा कूके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर तप्त दुख पावणिया।

तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजै शब्द बजाए, गुरुमुख भगत थाए पावनिया। बहुताल पूरे बाजे बजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावनिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावनिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सलाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहे, शोभा सुर सुहावणिया। रहाओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए, सत बाणी तुदे सलाहन, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूके फेरा, जां तुद पावे ता नाए रचावे, तू आपे नाओ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक्कस क्यों लिव लागी सधी, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निद नाम वखरा मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया, सबदे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सलाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सियो मन रहा समाए, मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो सलाहे, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम वसे।

तेरे पद सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

कछू ना होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण तिना ठौर ना ठाओ, तम पूले जो सुन्ने कर पाओ, हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावणिया। लिख दिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए न कोई, कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चितलावणिया। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार, सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे, होमे मैल लागी गुर शब्दी खोवे, मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावणिया। हों वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया, तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए, पूरे भाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए, सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे

मुक्त न पाए, देशांतर पवे दूजे पाए खुआए, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावनिया। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुरु आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावनिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाए पगत जा हो में सोखे, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वजावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हौ में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए, मनमुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैठ सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौ में मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावणिया। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप दवाए, आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हों में चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावणिया। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे पगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करे पुकारा, अन दिन रोगी बिस्ता के कीड़े, बिस्ता में दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर, आपे बनत बनावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावणिया। रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोह है, तू आपे नदरी जगत परोवे,
तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावण आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावण आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलक लखावण आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया आपे गुण दाता गुण गावे आपे आप सुनावण आपे करे कराए आपे आपे थाप उठापे आपे तुझते बाहर कछु न होवे तू आपे कारे लावण्या आपे मारे आप जीवाए आपे मेले मेल मिलाए सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावण्या आपे ऊंचा ऊंचो होई जिस आप विखाले सो वेखे कोई नानक नाम वसे कट अंतर आपे वेख विखालण्या माज महला तीजा मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपो दाता, गुरमत सह समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सह समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया, अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया, आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया, माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में आप समावणिया, हो वारी जियो वारी, सच सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया, रहाओ आपे गुरदाता कर्म विदाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर वस पावणिया, इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया, अंदर नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया, गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गा

पंडित होई आस करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौनिद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एन प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दिसे मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूझे चौथे कद लिवलावणिया हौ वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर्ष्यो चित लाए हर दर मैली सो बा पावणिया रहाओ देवी देवा मूल है माया सिमरत खास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जप सत संजम सच कमावे गुर पूरे नाम ते आवणिया पेयड़े तन परम पुलाणी दूजे लागी फिर पछो ताणी हलत पलत दोवे गवाए सुपने सुख न पावणिया पेयड़े तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखे नाले फिर सहज रह रंग राती शब्द सिंगार बनावणिया सफल जन्म जिना सतगुर पाया दूजा पाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहा कट अंतर मिल सत्संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मन मुख नाम चेतना आवे बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मेले शब्द पछाणे नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया माज महला चौथा आद पुरख अपरंपर आपे आपे थापे थाप उथापे

गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पगती परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती, मिल सच्चे शोभा पावणिया। मनमुख कर्म करे अंकारी, जुए जन्म सब बाजी हारी। अंतर लोभ महा गुबारा, फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिखत तुर पाई। नानक नाम मिले पौ पंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया। माद महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख ना जाई लखिया। नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब।

कौन सो बकता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन बिद बांदा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन ने कर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिए किन बिद बिछरे ए बिद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अक्षर जित तावक रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता तन गिर ही उदासी गुरुमुख गुरुमुख कीमत पाए जियो होमे बांदा गुरुमुख चूटा गुरुमुख आन जान टूटा गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा गुरुमुख करे सो सुभाए जियो गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे गुरुमुख बिद प्रगटाए जियो गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए गुरुमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस से होयो अनंता नानक एकस माए समाए जियो माज महला पंजवा प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुख दाता तू करे सोई सुख पावण्या हों वारी जियो वारी गुरुमुख मन तन पावण्या तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला तुम संग लवे ना लावण्या रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा कट कट पार

भक्ति पाए परे पंडारा, दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावण्या। अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नदर निहाले, गुण गावे पूरन अगनासी कह सुन तोट ना आवण्या। ऐसे ओथे तू है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावण्या। क्या गुण तेरे आप संभाली, मन तन अंतर तुद नगर निहाली, तू मेरा मीत।

तू साहिब सरण सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अठाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंख न जाइए तोसा हर का

संकट जिस दे पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल न उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल नान।

हर जप जपे मन फीरे रहाओ, सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए पै दूरे। शरण आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे चूरे, चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे। कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे, पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे। सब छड़ाई खसम आप हर जप पई थरूरे, करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे। नानक रत्ता सत नाए हर वेखे सदा हजूरे। बारह माह माज महला पंजवा कर चौथा

ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਪਰ ਹਰ ਕੰਸ ਨਾ ਪੱਗ ਤਈ ਪਥ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ।

ब्रह्मानंद हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाद मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संदियास दोए पाए भी गुच्ची है गल पई सुजम की फास

प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा किस लगे जिस मन हर

हर फिर दिन चैन न पाए खोज दिते सब गैन आप कमाने विछुड़े दोष न काहू देन कर कृपा प्रभ राख लियो

सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार। ससुरे पे है तिस कंत की बड़ा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार। सेवा सा तिस पावसी संता की होय चार दीना नाथ दयाल देव पतित उदाहरण हार।

नानक जीवै जप हरि दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट दही मन अंदरे जप जप जीवा नाओ कर कृपा।

चार उपनिषेद पंजवें खान पीन की तात छेवें कामना पुछे जात सतवें संग किया परवास अठवें क्रोध हुआ तन

तब तू का कवन हार पौरी, तू करता पुरख अगम है, आप सृष्ट उपाति, रंग तरंग उपार्जना बहु बहुविध पाती, तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती, गुरुमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद प्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

जिन रच रचिया अतिशैन जाने अंधा अंध कमाए। जा पजे ता ठीक होवे कारक करी ना जाए। नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार ना पाए। महला दूजा देंदे थावों दित्ता चंगा मनमुख ऐसा जानिए। सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखानिए। अंतर बह के कर्म कमावे।

ते क्या दूजा आख वखाणी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानी है। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै, तुद आपे तंदे लाया। मोठ गौली पाए कै, तुद आपो जगत खुआया।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम के आई है सुख रजा जा कुछ पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत सो

क्यों गल लगे ताल तैके चरण कर पाव के लोइन सुरत करे नानक कह सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तुझ दूजा खेल विचाया हौ मैं गर्व उपाय कह लोभ अंतर जनता पाया ज्यों पावे त्यों रख तू सब करे तेरा।

हम संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर्षों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। ऊर बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अनदिन हर हर नाम के आए, ओ आप छुटा कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि छदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो अवर दिल।

पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे देवा पारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा गिन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझन विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का

अग्गी पाला कप्पर होवे खाना होवे वाओ सुरगे दिया मोहनिया स्त्रियां होवन नानक सबो जाओ पीतू है सालाहना आसन लह न चाओ। पौड़ी बद शैली गैबाना कसम ना जानई सो कही है देवाना आप ना पछाणई कल्ले बुरी संसार वादे खपिए विण नावे बेकार परमे पचिए राह दोवे इक जाने सोई सिजसी कुफर गो कुफराने पया दजसी सब दुनिया सुबहान सच समाये सुजे दर दीवान आप गवाईए। महला पहला श्लोक सो जीव्या जिस मन वस्या सोए नानक अवर न जीवे कोए जे जीवे पत लखी जाए सब हराम जेता किच खाए राज रंग माल रंग।

क्या सोए, क्या मेवा, क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा, क्या मांस, क्या कपड़, क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास, क्या लश्कर, क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार सबक सुनाया, एक होए असवार इतना साखती,

आस, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है, पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझा।

वेदा गंध बोले सच कोए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोह मार, नानक आखे एहो विचार, सिफती गंध पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार, खरे खजाने पाई है खोटे सतिये बार बार, खोटे सच्ची दरगे सुटिये किस आगे करे पुकार, सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगे मनियन गुर के प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार, श्लोक महला पहला, हम जे जिमी दुनिया पीरा मसालता राया, मेरवद बादशाह अफजू खुदाए, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना दादे दिहंग आदमी, ना सप्त जेर जिमी, अस एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सप्त दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तू ही महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आसवसे, अस एक जिगर कोई, एक तू ही महला पहला, परंगे ना गिरा जर, द्रक्त आब आस्कर।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मन मुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया गिन नामे दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा करा पछाणिया श्लोक महला पहला सीहा बाजा चरगा कुहिया एना खवाले काहा काओ थान तिना मास खवाले एह चलाए राहा नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगाहा कीड़ा थाप दे पात साई लश्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों

चार कर्म कमाई है, गुरमती आप गवाए नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विष तय जय खाई है, सच्चा सबल सलाह है, सच समाई है।

गुरमुख रतन सोले वै पौड़ी भगता तै संसारियां जोर कदे ना आया करता आप फुल है ना फुल है किसे दा फुलाया भगत आपे मेलियन जिन्नी सच्चो सच कमाया संसारी आप खुआयन जिन कूर बोल बोल दिख खाया चलन सार न जानी काम क्रोध विश वधाया भगत करण हर चाकरी जिनी अंगिन नाम ते आया दासन दास होए कै जिनी विचों आप गवाया ऊना खसमै कै दर।

करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नहीं तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाइए मुठी तंदे चोर महल न पाइए इन चित कठोर सेव गवाइए जित काट सच न पाए सो पन कढ़ाइए क्यों कर पूरे वट तोल तुलाइए कोई ना आखे तत हो।

नदर शराब की बहुर ना पाई ताओ सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास उसे पाप पुन बिचारी है पूरे कत्ते रास उसे खोटे सती है खरे की चैसा बास बोलन फादल नान का दुख सुख खसमे पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता करत मात दिन रात।

पहला नानक गुर संतोख रुख तरम फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म त्यान पत के साध खादा लहे दाना कै सिरदान महला पहला सोने का बिरख पत पर वाला फुल जवे हर लाल कित फल रतन लगे मुख पासित हृदय हृदय निहाल नानक कर्म होवे मुख मस्तक लिखिया होवे लेख असर तीरथ गुर की चरणी पूजे सदा विशेख हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवे दज्जे नानका करिये करनी लग पौड़ी जीव दिया मर मार ना पछोताइए झूठा इव संसार किन समझाइए सच ना करे प्यार तंदे ताइए काल बुरा छे काल सिर दुनिया आइए हुक्मी सिर जंदार मारे दाइए आपे दे प्यार मन वसाइए मोहत ना चसा विलम परिये पाइए गुर प्रसादी बुझ।

खादा रज तिन सुख पाया, ताडी करे पसाओ शब्द वजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया सुध।

मुझ पारा वड्डा कोल मन मत हौली बोले बोल सिर पर चलिए सही है पार नगरी करमी गुर विचार कै बिन कोई ना लंगस पार कै पौ राख्या पाए सवार रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल कै पौ कड़िए सब दुसवार कै बिन काड़त कच निकच अंधा सच्चा अंधी सच बुद्धि बाजी उपजे चाओ सह स्याणप पवे न पाओ नानक मन मुख बोले।

डर डर जाए, सो डर के हा जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसमान, इस विच भूख बहुत ने।

तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत तन माल नानक आखण बिखम विचार गौड़ी मेला पहला माता मत पिता संतोख सत पाई कर ए विशेख कहना है किछ कहन न जा।

देही माटी बोले पौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार। जय कारण पट तीरथ जाही, रत्न पदार्थ पट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर हो दी वत्स न जाने। हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सो सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले।

गीत हुकम संजोगी गण दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां से आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिनके लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए, बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी महला।

रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नाही को थाओ, नानक गुरुमत सहज समाओ, नानक गुरुमत सहज समाओ, गौड़ी महला पहला, सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन

रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुर मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर

ज्यों पावी त्यों नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सब शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई, दौड़ी महला पहला, जिन अतप कहाया अप्योपी आया, हम कह विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर वास, सहज सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

सतगुरु ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जान कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहो संसारो, लग लोभ।

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिखामारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना, रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे, जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले, गौड़ी चेती मेला पहला। अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना, श्री राम नामा उचरमना, आगे जम बल बिखम कना, रहाओ उसार मरोली राखे द्वारा, पीतर बैठी सातना, अमृत केल करे नित कामन, और लुटेन सो पंच जना, ताहे मरोली लूटिया देहोरा, सातन पकड़ी एक जना, जम डंडा गल संगल पड़िया, पाग गए से पंच जना।

एके ते पंख उड़ाए, अटपटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे, तट तीरथ हम नवखंड देखे अटपटन बाजारा लेके तकड़ी तोलन लागा।

तरे अंश न चाहया जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग छु होए।

कर्म ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए, नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई।

तेरा सौ मिल है वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुभाय मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार उर्वार पार मेरा सौवत है हो मिलोंगी बाप पार। नागन होवा तरवसा शब्द वसै कौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौरी पूर्वी

नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत नाप वै तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असीसड़िया जो हो वै साहिब स्यों मेल पार कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सज्जन हारा सिमरिय नानक से दे अवन रागौड़ी गुआरेरी मैला तीजा चौक दे

अंत न पारावार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार।

पूरे पाग मिले गुर आए, साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए, गुर से सांत वसे मन आए, गुर से पवित्र पावन सुच होए, गुर से शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख हो वैसो नाम से आए, दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सोथाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किस पाचा आपे आपे। कर्म होवे सत्संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सोखाए, रवाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर वस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुभाए, गुर कृपा से सत समाए, साचे राती गुर शब्द विचार।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ इक गावे इक भगत करे, नाम न पावे बिन असनेह, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राखिया सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए टपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बसे नाम पछाने, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे देवड़ियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मित धारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख एव मन।

नानक गुरमुख नाम पछाने गौरी ग्वारे री महला की जा। होमे विच सब जग बौराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना संदा करत्या अंजन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई। रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता। हों मैं मार गुर शब्द।

हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम करत्या सुख सांस शरीर, अंतर वसै न लागे जंपीर, आपे साहेब आप वजीर, नानक सेव सदा।

जित सेवे दरगे पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ, रहाओ तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

जय सतगुरु सहजे हर गुण गाई, जय सतगुरु तहां हौं मैं शब्द जलाई, गुरुमुख सेवा महली थाउ पाए, गुरुमुख अंतर हर नाम साए, गुरुमुख भगत हर नाम समाए।

तहां गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई, आपे सुतिया देह जगाई, किसकी कीमत किने न होई, कह कह कथन कहे सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा से पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान।

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आस करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कर्म न कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना

सच्चै राते हर वे परवाओ, सच्चै मैल सच नाम समाहो। सुन मन मेरे शब्द विचार, राम जपो पव जल उतरो पार। रहाओ परमे आवे परमे जाए, के जग जन्मया दूजे पाए। मन मुख न चेते आवे जाए, आप फुला के प्रभ आप फुलाया। इहो जियो विडानी चाकरी लाया, मां दुख खटे बिरथा जन्म गवाया। कृपा कर सतगुरु मिलाए, एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए। नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। जिना गुरुमुख त्याया चिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए। से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सो जी पाए। हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई। गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई। रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए। दूजे पाए न तेरे आ जाए, हों मैं माया महा बिख खाए। पुत कुटुंब गृह मोह आजमाए, मन मुख अंधा आवे जाए। हर हर नाम देवे जन सोए, अंजन भगत गुर शब्दी होए। गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए। नानक नाम समावे सोए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई। अखुट नाम तन हर टोट न होई, ऐसे सदा सुख दर शोभा होई। ए मन मेरे परम न कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै। रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे। हर का नाम रखे उदारे, नाम रते पौ जल उतरे पारे। सतगुर सेवे सदा मन दासा, हों मैं मार कमल परगासा। अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपें हर

भोग हृदय नाम नित हर रस कोग गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किन विरले चख डीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागन जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत।

एक होए के क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आहे। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निदान ले दरगे ले छबाए।

पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए अन दिन भगती रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार गौरी बैरागन महला तीजा कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव करे गुण समले सौरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरे पेये फिर वसे कहो कित विद पाये आप निरंजन अलख है आपे मेलाये रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आये वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाये सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा गौरी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित विद पाई है संत जनो जिस देख हो जीवा हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ हर गुण गा

हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया पार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन चावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा। नरपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे। जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए। भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए। हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी। रहाओ चटवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे। गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए। हृदय बिबसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए। और सब प्रीत माया मोह काचा, बिनस जाए कूड़ा कछ पाचा। जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी। जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी। गुर सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई। राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया। अंदिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिना मुख लाई। तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई। गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे। नानक गुरमुख हर आप तरावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी। हर आपे रब रहा बनवारी, हर आपे तप पापे लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहा परपूर, निकट वसे ना ही हर दूर। रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुम आपे, हर आपे वेखे विकसे आपे। हर आप जपाए आपे हर जापे।

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रात दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वंज करे वपारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जे है वंज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वंज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साओ।

होए तन छाट दे पर भोग बिलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझे वडैया रहाओ मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगे जा हर गुण गावे हर जन परवार सवार है इक्की कुली सब जगत छड़ावे जो किछ किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत पंडार लहाएगा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या शिष चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई जन नानक हर का

मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा।

हो बतावे क्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिच संचय हटवाणिया बहाट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपताए क्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च ले जाए एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजे पास गुरमति सो जंतर है जो दासन दास जन नानक नाम से आया गुरमुख परगास गौड़ी बैरागन महला चौथा नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार सिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कह कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कह कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की चै बहु पात कर माया कै ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाए जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख न लागे गौड़ी बैरागन महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हर

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सत।

हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुबत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस ला।

गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह लै बोले गुण विहून।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी। कोई जानो मास काकी कै किछ हाथ है, सब वसगत है।

रामरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जगते अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरे सिर वेचियो गुर कह मोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुरवे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड अवर न दाते जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभु सदा नाल है। स्वामी कौ किथे हर पहु नसीए, हर आपे बस ले प्रभु साचा। हर आप छदाए छुटिए, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सतगुर की शरणाई पज पो, मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए। रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभु सर्व सुख दाता। जित सेवे निज कर वसिए, गुरमुख जाए लहो कर अपना। कस चंदन हर जस कसिए, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम। लैलाहा हर मन हसिए, हर हर आप दया कर देवे। ता अमृत हर रस चखिए, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे। ते साकत नर जम कुटिए, ते साकत चोर जिना नाम विसारिया। मन तिनके निकट न फिटिए, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर। जित सेवे है लेखा छुटिए, जन नानक हर प्रभु पूरे किए। खिन मासा तोल न कटिए, गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे प्राण वसगत प्रभु तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी। दया करो हर दर्श दिखावो, मेरे मन सन लोच कनेरी। राम मेरे मन सन लोच मिलन हर केरी। गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभु मेरी। रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी। अंदिन नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाते पंथ

जाने आगे जो हर राखे त्यों ठाने हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस साध।

अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ग्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम

जन नानक गुर के लाले बोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सतगुरु दाते नाम दिड़ाया मुख मस्तक पाग सबागे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ तट पट रमैया रमत राम राए गुर शब्द गुरु लिव लागे हौ मन तन देवो काट गुरु को मेरा प्रम को गुरु बचनी पागे अंधियार है दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो।

चाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टी चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बदपागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस आघा।

मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वद पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रखड़ा सदा निर्वाणी जियो। वद पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग तिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, रिच संगत नाम सदा लैलाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा। सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत उठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना। गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो। मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो। हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा।

मन अनदिन अनग्रह जियो हर पायणा वड पागई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कार लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौरी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासिया।

तेरा मन तन बहुत बहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो, मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो, हूँ रह ना सकूं बिन देख।

मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर लाया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन सन आशा पू

भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएगा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप अधूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप बजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सबदी हर कब गाजे जियो। आपे शरण पवाएदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरुमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो। गुर सबदी पाये हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम।

ताजी वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुंगवा जियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुरमेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई।

इन विद कुसबोत मेरे भाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना गए मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हौ मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हौ मैं मार समाया। इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाय। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, क्यों प्रमिये प्रम किसका होई, जहाँ जल थल मैयल रविया सोई। गुरमुख उबरे मन मुख पत खोई, जिस राखे आप राम दयारा, तिस नहीं दूजा को पहुँचन हारा। रहाओ सब में वर्ते एक अनंता, ताकू सुख सो होए अचिंता, ओहो सब किछ जाने जो वर्तनता। मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा, बहु जोनी पवे तुर किरत लिखियासा, जैसा बीजे तैसा खासा, देख दर्श मन पा।

साफ कर उपाया, लख चौरासी जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे पर

सदा अविनाशी गुर के बचन कति जम फासी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन।

गुरका शब्द अमृत रस चाख। अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज। क्या मानस कहो क्या जोर, चूठा माया का सब शोर। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो। जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो।

सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारेरी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाना, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आंख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

पंजवा अनेक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ जो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का लाह सुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जाके हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अघाना अनेक रूप देख नहीं।

तन त्रिग तन माया संग राते रहाओ जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

आई कृष्णा आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आ गए अरदास। बौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विद पेखी, कलम कागज सियान पलेखी, मेहर मलूक होए दे।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड पागी।

कवन बापारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाई लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सौदा जोरे,

सद ही संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरु पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि कृपा।

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत इह जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, कहो नानक जिन तू

जागत रहे, साबत वक्त ओह अपनी लहे रहाओ। सगल सहेली अपने रस्मा की, गृह अपने की खबर न जाती। मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई। दर्ब स्यानप ना ओई रहते, साध संग ओई दुष्ट वस होते। कर कृपा मोई सारंग पान, संतन तूर सर्व निधान। साबत पूंजी

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तने जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पा।

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

चाहते है और ब्रह्म परमेश्वर चाहिए गुर पूरे ते मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जन सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रब सेवक साचा वेसा हो गुर पूरे राख दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला कमवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुरदे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत हो।

माया मगन ना कछु मोह है। उदरे आप करे संसार, राम नाम जप के कंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान। आप पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो तिस।

सा हट कर जाती। सत होवन मन लगै न राखी, बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना, दोहा सुरिया का।

किरत संयोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाये, प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये। शील संयम प्रिय आज्ञा माने, इस नारी को दुख न जमाने। कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, तन सती दरगे परवानिया। गौरी ग्वारे री महला पंजवा, हम तनवंत पाग

या भरपूर सतगुर अपनी कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई न कही जाए, छोड़ मान हर

जा को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपतायो जा का तहया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जा का सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त

जिस पर कृपा सतगुर मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया, गौड़ी महला पंजवा दुलभ दे पाई वड पागी।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम हृदय समाया। गौड़ी महला पंजवा, साकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

सो वड़ा जिन राम लिवलाई रहाओ पूमिया पूम ऊपर लित लुजे छोड़ चले कृष्णा नहीं बुझे कहो नानक ये तत बिचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पंजवा पूरा

काज योग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीत करण हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नाश है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा। एक सो जा का मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जा कै हर तन सो सत्साओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत कै प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे साफ साफ जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द प्रम पौ नसिया करण हार नानक मन

चरण ठाकुर के मार्ग तावो फलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेज जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताते बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप।

मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तै दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल हृदय अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मन तन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपक बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो साफ साफ प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, पाते कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण का साथ, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सगल रोग का दिन स्या खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल।

चले हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए, मारे राखे को सोए। रहाओ गुरु के चरण हृदय उर्धार, अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख्यो लाए ध्यान, ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधेसे नान सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै में रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर मां व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया। राख ले

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से ब्रह्म को पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास, गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग दे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही मुख पाद।

जो कुछ वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर

पूरे सतगुर मिलन सारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग ना उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पए निहाल, कहो नानक गुर पए हैं दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विथना से, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा, रहाओ, साध संग कछ पौ ना पराती, गुण गोपाल गाये दिन राती, कर कृपा प्रबंधन छोटे, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस की रे जननीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता

आस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस की वो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किलबिख सब टोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे सागर वाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए किस क्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा दास सलाम करत कत सोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माए ध्यान सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल ले जाए रहाओ हर की कथा हृदय माए बताए मन

पाचत सगले फल पाए जीवन मरण जन्म परवान जा के हृदय वसे भगवान कहो नानक से जन पूरे जिना प्राप्त साधु पूरे गौड़ी महला पन्नवा खादा पैन दा मुँह कर पाए किसनों जो है दूत धर्म राए किस त्यों बेमुख जिन जियो पिंड जीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस तरह सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी शरणाए बंधन काट करे हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को की नोमीत सगल मनोरथ मुक्त पद जीत ऐसा मीत करो सब कोए जाके बिरथा कोई न होए रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया दुख दर्द रोग सगल बिदारिया रखना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनित बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सज फल परम पजियो पार ब्रह्म कहो नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोख होए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर।

कर कृपा प्रभ ले निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए रहाओ। महातप सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारन हार, अनित बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, हाथी पाई हर को नाम, विचर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ। हर के चरण हृदय उर्धार, पाव सागर चढ़ उतरे पार, साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगे पाये मान। गौड़ी महला पंजवा, जल तल मैयल पूरन हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा के सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास, आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक, महागरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे देहात। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर।

कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ, हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विखनते, साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो भिक संसार, कर कृपा प्रभु कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना, गौड़ी महला पंजवा, पौ शरणाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर गाते, कह पंजन प्रभु मन ना बसाही, दर्पत दर्पत जन्म बहुत जाही, रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक, गौड़ी महला पंजवा, बार राख्यो हृदय समाल, कर आए गोविंद ले नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मंतन राता राम कै रंग, रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विच सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप, गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर बिसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे, सोवड पागी निचल थान, जह जपिय प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद से आवे, पढ़िया अनपढ़िया पर

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान। काट काट

टोल महारस हर अमृत की जय। रहाओ निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संगते गोष्ठ होए।

साज तूर कर सुड मन जाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर के आइये गोपाल।

आगे आप क्यों थान वस जाते हैं, आप कह रहे मन हर को जाते हैं। पप प्रवान सत निशान जाको आप करें फुरमान, आपके दाता आप प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सद ही सुख पाया। माया करी पूरन हर राया, रहाओ कहो नानक जाके।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते प्रम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौरी मैला पन्नवा, उद्दम कर शीतल मन भय, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पए आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, एकत साध संग गई बलाए, रहाओ नेत्र पुनीत पे खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस।

अतुर पै बस सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, ताप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत बेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अदाज बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोविंद

नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उभरे सब कोए, करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौरी महला पंजवा, कुछ बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में।

सारे सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मा रस माए सो प्रसन्न पै केशवा से जन हर गुण गाए। मात पिता सुत बंद को तू मेरे प्राण आधार साध संग ना।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन कादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत मिल।

कौ संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण दहो पूरन।

है कोई संत मिला वे मेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेटत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोह मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मो सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त।

मंत्र दियो मोह निरपो गुरु का शब्द कमाया जीत ले ओए महादुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए अफारो एक महल निवानो एक महल तू

रोजाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप्रम।

क्यों फिर कह रहे आओ पशुआ रहाओ, जो जाने तू अपने काजे, सो संग ना चाले तेरे पशुआ। नांगो आयो नाग सुदासी, फेर फिरो अरकाल ग्रसुआ। देख देख रे कसुम की लीला, राज मात तिन्हों लो हसुआ।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाहे रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ मार्ग प्रभ को

सुहेले, सर्व सुखा मैं तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले। वरन नासा को तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। परम पो काट किए ने केवल जब के

है जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोबन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुर के मोको सतगुर शब्द बुझायो।

अरे इकतरा एकसके वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी। परम जराए चराई विपूता पंच एक कर

ऐसा जोगी वद पागी पे तै माया के बंधन काटे। सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता। हर औषध जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तन के गुर शब्द दीपक परदासा।

संगार पूरन होई मन की आशा गुर के त्योहार रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त।

संग तुम प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभ हुआ हम जन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रप्राण अधोरी।

हर नाम मेरा मन जाके संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल त्राके गौड़ी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुर।

पयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर जान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन सत्या अनकै ठहरायो। मान आ गया सब सुख पाए, दुखे ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पे प्रभ था।

जिन तार ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाज।

सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मां कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राखे पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्याव

गीत जन्म के रतन अमोलक साध संगत जप एक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक।

राम सेवक पैर कीन, लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहु में रही हर साध शरण नानक गही। गौरी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाये, नीत नीत हर सेविये, सास सास हर त्याये, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जापिये, सो जन दुख ना व्यापिये, जाको गुर हर मंत्र दे, सो उबरे।

आनंद कना आगे जी के संग काम रहाओ कटिये तेरा अनुरोग तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

गौरी महला पंजवा जाको बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निध सिद्ध जो जाने हर प्रभ तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान सब का खाना रहाओ। ऐसे है रे खसम हमारा खिन में साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लोरे रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिय रहाओ। जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाय। जो होए दयाल सतगुर अपना, ता ए मत बुद्ध पाई। मेरे मन नाम ले, जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पा।

भिकारी बुरा पला नहीं सुजिए, बुरा पला नहीं सुजिए। अनक बंधन माया परमत परमाया गुंड नहीं पाया, मन बिछे ही मैं लुजिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे, साध संग माया।

संत प्रमडार्यो पूरन सर्वाग्यो जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जागियो जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आगियो नाम रंग सहज रस माने।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी फूक त्रिशन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिप अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेटियो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पे बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जल तो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक।

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जब तब संयम कर्म कमाने यह ओर है मूसे रहाओ वर्त नेम संयम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओह लोगन ही पति आवे। चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सगली चाक चखाई है। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से वो अर नाम ते आवो त्यागो मनोगुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा पूरन खत्म हमारे। करो कृपा सर्व के दाते एक रूप लिव लावो नानक की बेनंती हर पे अपना नाम जपावो। रागोड़ी माज महला पन्नवा ओंकार सतगुरु प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेव लगाया जियो।

पतित पवित लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ ते आया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लई है जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पै कही है जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रात सतवा

जोर तुम्हारे सुख बसां सत शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी।

कृत सोजी मन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जाचत।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर सोगते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो इहो जग देख ताक उठतावे। फुगत मुकत का

साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोग मोह माया ममता सुन, औ विकियन की सेवा, हर्ष शोक परसे जे नाहिन, सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब, क्यों कंचन अर पैसा, उत्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन, ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहाँ पयो तैं बौरा, एनस औद कटे नहीं जाने, पयो लोग संघौरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी, इनमें कटते रो रे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तैहारियो, गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों, बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहिया, निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत, ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस दे बौर ने पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाय।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिकमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उलट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साज रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्मा।

जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई, तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा निज ठाई।

तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्त सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवें खसम एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे सा साचा, मुक्त पेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच उधार है, रहाओ जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैरच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, हिमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप ना देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन प्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुरु सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो नाओ, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निराशा, काम क्रोध बिक भूख पे आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रसारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र पास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, बिन बूझे जगत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तप विचारे, साच हृदय सच

चोवा चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अत्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवर

रंगमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला। सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे। पाय मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई। हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है। दुर्मत अगन जगत पर जा रहे, सो उबरे गुर शब्द विचार है। प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना। तृष्णा राज तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी। क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी। पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए। गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे। काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई। पर पर पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा। बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा। ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता। गौड़ी महला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे। वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे। तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख। रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर। नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम। अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम। वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला। दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के

किसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, किसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो किसको जिसका इहो जियो, गुर सब जी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहूं तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला हूं मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया, हूं करत नहीं सच पाई है, हूं मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हूं मैं कर राजे बहुत आवे, हूं मैं खपे जन्म मर आवे, हूं मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंथ संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के करतारी लावे, हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जैसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हों में बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेचल कोई न दिसे।

ओ गुरमुख जापे ता पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिक बैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौड़ी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैसे काल न जो है, मन मुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एक अंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी, मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौड़ी महला पहला, राम नाम चित्रा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हो मैं मारे गुर सबदे पाए, अर्ध उर्द की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

सेवा करें ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं दिसे। इस पद जो असाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परमे फूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव, सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत शोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला कीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विच्चो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हों मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हों मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जमकाल

परम पुनाए, मनुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन

बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए, रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिवलाए, हौ मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा, रहाओ। हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जहां हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन वेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान। रहाओ मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तैरिया समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर सुध भई, हऊ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पहे पचन तिहो जग परम पुलाया मोठ गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौ मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुरु पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे

मन करहला गुरु गोविंद संभाले रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याय हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दास करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ तारिया जम मारे अड़ा जमकाल। अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुरु।

जब हो मन में करत गुमाना, तब एहो बावर फिरत बिगाना, जब एहो हुआ सगल की रीना, ताते रमैया कट कट चीना, सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी, रहाओ जब किसको एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा, मेर तेर जब इन्हें चुकाए, ताते इस संग नहीं बैराए, जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल पारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किस ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा।

आस जपत पाओ अपदा जाए, तावत मनुआ आवे खाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे। जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे। जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध। जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास। जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता। जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन।

जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। जेता देखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जा।

अनपौ नगर तहां सद वसे, तह पौ परमा सोग न चिंता, आवन जावन मृत न होता, तह सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसे कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करे ताका विचार, कहो नानक जिस कृपा करे, नेचर थान साध संग तरे, गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाए, ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे, रहाओ जो इस मारे

सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी।

अरे हर का दास नीच कुल सुने तिसके संग खिन में उदरे कोट मजन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुरते विद जानी मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब पूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कता की काल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख

बोले कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दव की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी में

जन्म जन्म की हूँ मैं मल्हरो, किस गुर को चुलाओ पाखा, माँ अगनते हाथ दे राखा, किस गुर के गेटो पानी, जिस गुर ते अकलगत जानी।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार। सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्योहार, जो मृतक मिथ्या सिगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जमपुर बादा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना चूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मद जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले। रहाओ बिन सतनाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए। सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता। जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, से होए भगत जिना कृपारिया, हौ वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौ दिस जपिए नाऊ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लद्दा रतन अमोल अपार।

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाभ तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध न जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख।

मुंद रहन दुहे लड़िया जियो नींद ना आवे सातन दुबलिया जियो पिरके हावे तन थी दुबल कंक हावे केव नैनी देखे सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्दा थनी ना आवे नानक सातन।

बिन करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सखी सहेलियो हम फिर रावेहा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करे रलिया, इच्छ मेरी पुनिया। कौड़ी छंत महला पहला, सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनवाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे, तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया, बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सा तन मेरे।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बे बाने नानक सच कर सब

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

नानक कामन सदा रंग राची, हर जियो आप मिलाए। ता मिलिए हर मेले जियो, हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए, यूं मिलिए माए, तासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया, गुर कै पाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा, फिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई। फिर बिन नींद ना आवे जियो, कापड़ तन ना सुहाई। कापर तन सुहावे जा पिर पावे, गुरमती चित लाये। सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये। गुर शब्द मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे। नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे। सा तन रंग माने जियो, अपने नाल प्यारे। एनस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे। सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे। नानक कामन हर वर

अन ना पानी, पानी अन ना पावे, मरिए हावे, दिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर कूर कुसत परिया, गल काए पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजै, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे प्यारी, विच्चों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उधारे, अंतर उधारे मिलिए प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो, प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे, हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुनिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुरु बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहता जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यो मरिए, खिन में राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हों मैं पाप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाई है, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप सराय करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

प्रसाद गवाए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना सबक सुहाए, नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाईए आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए, दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुवाए, बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर शब्दी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार तिरा जियो शब्द मन ना वसाए, माया का परम अंग तिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए, जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा गुरुमुख आप।

एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे, गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे, फिर दोष ना ही सुखें दाते हो विछड़ी बुरे आरे, बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा, हो सिर अर्पी किसनी प्यारे जो प्रभ दे संदेसा, अर्पिया ता शीश सो कान गुर पे संग प्रभु दिखाया, खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया, दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेसा, बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा, मेरे मन अंद भया जियो वजी वादाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई, मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाओ गवाया, अनहतवा जे वजह कर मैं फिर संग सेज विछाई, बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

है। जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कल तारिया तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज रा

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आरा दिए जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत सा दिए कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आरा दो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जनता

प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक।

हर संते मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मंते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा।

गोविंद गाये कल कलेश मिटे प्रम नासे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये। सखी इच करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक को रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तार निर्गुण ते सरगुण दिष्टार सगल पाक कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप।

माया मोह सब कूर, नाम विहूने नानका होत जात सब तूर पवनी। तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ, तन तेउ जहे रुच या मनुआ। तन नहीं बाँचे सुर्ग नाचे, अत प्रय प्रीत साध रज राचे। तंदे कहां व्यापे ताहू, जो एक छाद अनकते न जाहू। जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पेट

आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी श्लोक आम

आया, जन्मत मोयो मोनी माया। गर्भ कुंट में उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छदाना, देवन हार मने बिसराना। तारो कृपा जिसे गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आ

ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किर्त कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रव्याप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा।

या माया में जन्म मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित।

गमिये जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुरपूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मार

फट शास्त्र होएंगे आता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनो सौ अनेता, हो आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किर्त की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तत्ता कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिगसे अनुभ स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना दान ते।

तीनों लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का विलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरदी कच बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहु मस्तक पाग नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप जुगा दी हो।

कूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुनः चरना, काल काल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

काल के जो साकत प्रवकीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए पर कृपा जे आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पै नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग शांत प्रगट

सभागा चार कुंट देह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

पौड़ी। जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ, जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिर

चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत, जीवत रहो।

बिनस्तो कास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते ते कडो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा के हा

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसु नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सक।

आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनेक बंच बल छल कर हो माया एक उपाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कह कामना आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो

पौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपे मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साओ छत

नानक गुर ते सिख पाई, फिरन मिटे नितनीत पौड़ी। फफा फिरक फिरक तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया, फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान ना होई, एक जपो जप सोई, करो कृपा प्रभु।

मन मूर्ख कह करे पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे।

एक नाम बिन कहे लौस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा। या उबरन तार है सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख ले हो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई, नानक ते मत प्रगट।

मैं खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राय उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहस पाठ करें।

मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताए न जानत तत् लाहा माया कारने दैद स्टूडेंट जाए देवन हार दा तार प्रभ निमख न मने बसाए लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हो संग बिहाए खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। श्लोक हाथ पीत खेलत हस्त परने जन्म अनेक पव जलते काडू प्रभु नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो अनेक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए खिमा गई सच संचयो खाए।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए मुख।

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दी।

पंजन गुरुदेव बंदत सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

कै सिमरन दूख जम नसे, प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे, प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे, प्रभ कै सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तक पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगै मानी, प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला, से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुरु पाए, प्रभ कै सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि सनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरुष प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरै से परोपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन नेचर आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाए, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पारा श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण तर्क नहीं तरे, हर को नाम को पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार्ग हो जाति के लाते, हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ते पार कराही, अनेक विघन जह आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम सतक जो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध समात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आप पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते करे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संग बड़भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व तंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव महा उदास कपि सरथीव अगन माए होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत जप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न भिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहाँ होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे अनेक जतन कर प्रसन्ना ध्यापे पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गहने सिजय छूटत नाही ऊप बयाल मोह व्यापे माया जाल अवर कर तूत सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सब जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे सब जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साप संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने से बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर

अंतर जामे। अपनी गतिक जानो आपे आपन संग आप प्रवराते, तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल।

कुमारिया बाल व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद दीर्घ पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को देन त्यों निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक कार लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे

उपसंग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाय किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्याप लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे तरे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा। कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुम्हारी कृपा ते। संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

सारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख काहु मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए।

आए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारत दाम। तन तन से जन जे कट बस्यो हर नाव, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, किसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक पुंजन चरण पर आता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप तर्क निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहते, सब कछ जाने आत्म की रहते।

राष्ट्रपति जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पतंबर हंडावे किसे त्याग कत अवर लुभावे जे प्रसाद

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस

जे प्रसाद सुख सहदेव बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।

मेरा साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है।

ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

हैं, कई कोट आप हम ध्यान पा रहे हैं, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नरसन नाम दिहावे नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिर है, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र।

कई कोट जक्त किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब के मेरे सब हूते दूर, नानक आप अलिपत रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बोजो नी फिरे,

जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड।

तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तक के बेटे सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पह सब सद ही जीवे। कई कोट नाम गुन गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यार।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मानव गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर करावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे, दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी।

गुरु प्रसाद नानक सच कह। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस

अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में

अष्टपदी जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सो जन नानक दरगे परवान। कूट कर्म करे हों तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे कहो कैसे गवै,

शेष जाए, प्रभु कृपा से बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लखो सावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनेक भोग दुखिया के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए, करण करा।

और अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन कागजों लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दोखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंट करना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग।

संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसै का नहीं मित। संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग। संत

अरविंद कह हर करम श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ता गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंजन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन से त्यावे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन में न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अभेद पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुबाए हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभु आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभु की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस किसका दिया दर्भ है आप सूराजे को कहावे प्रभु की कला बिना कह धावे जे को होए बहेदा तार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तैहो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थमन क्यों गुर का शब्द मने अस्थमन जो पाखान नाल चढ़त रह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे क्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा।

मन मूरख काहे बिललाई पूर्व लिखे का लिखिया पाई दुख सुख पर देवन हार अवर त्याग तू तिस चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद सेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संतें संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए क्यों व्यापार बिरला व्यापार है नाम का कह सब बलिहार है चरण साध के तो पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड पागी पाई है साध संहर की संगाई है अनेक विघन पे साधु राख है हर गुण गाय अमृत रसाख है ओट गई संतें दर आया सर्व सुख नाम के पाया मृतक को जीवालनहार पूखे को देवत आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस किस का ओ करने जोग किस दिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबसे ऊंच निर्मले करनी पर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोदन निर्मल थिया जा के मन गुर की प्रतीत किस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जा के हृदय को होए सच करनी सचा की रहत सच हृदय सतमुख कैत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोदन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रिगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अभिन

सब पाप मिटावे। अवर से आनप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा नाग। आमन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब तेरा।

अष्टपदी जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साधना की मांगो तूर पाद्रम मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ में ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास हम दिन लिवलाग। बल पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुकुट जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुरे सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणकास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंतन अंतर एही सुआओ। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए। भगत जना के मंतन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपे सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुण यार नीत।

किनारा, बहु बेअंत उठते ऊंचा, नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार, त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत, कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की ओब्ख्यान। आपन खेल आप कर देख है, खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतुक करे अनंत सोज, आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया, दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जात पावे ता श्रेष्ट उपाए, अपने भाणे ले समाए। कुमते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभु जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जाए।

पाए सो समुंदर सी तप का देता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रात कह तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बार जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल है जी अनुभव पात जो जो रचियो सो तिस एहतियात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर प्रत्येक खोनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दोए लिहो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन से पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक दौर न आवे जाए किसते दूर कहाँ को जाए उभरे राखन हार ध्याए निरपौ जपे सकल पौ मिटे प्रभ कृपा से प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन पेखत कुदरत सृष्ट चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुर प्रदान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पै अमरा पद पाया सात संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अपदी संत संग अंतर प्रगीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत्ते नाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माए आकाश दयाल सर्वलोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम कौन पानी बह संतर माहे चार कुंट बह दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार दे हो स्वामी होत पोत गुरु प्रसाद धर्म का नाश नानक तिन में यो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस की यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार तब जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत किस तब ते सगली उत्पत्त।

पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस रे मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए। तिस ताकि या सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का ए सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमा

जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उदरे तिनके साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर पहे सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल विकार से रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभी खेप हमारी, प्रभु की उस

दास सुंदर चतुर तत्व का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

पहिरै हर दरगे पतवंत, राम नाम तन संचवै साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक। तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय, नानक संत निर्मल पय जिन मन वसिया सोए। पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस, कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख।

पव बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। श्लोक।

जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्तम खट शास्त्र।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कथे।

आए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म पर।

जम कंकर जो न सकई नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूरन बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत्र सगल धर्म पवित्र।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रै रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरें पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने।

इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इक ठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसा दियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूक्ष्म स्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे कुटंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब होना।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख उजल।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक किरपा ते हर त्याय है, गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे, हर अमृत हर उर्धार।

तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सुवालियो स्वरूप है जिनकी तीस पार लगाई गुरमुखानो।

संग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करें सो सच्चे।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विच्चों तिस्तिया न कोए, सतगुर सबना दा कला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए, नानक करता।

सो साहिब मन पाणी, जे को उस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे गुण आख वखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निर्वैर निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित, तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरमुख हर आराध्या, तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा, हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया, जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन, आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन, मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याए तू, सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे पावे, जो तुद सच सला दे, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिन के मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया, कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तरम है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगे सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए, जां सतगुर सराफ नदर कर देखे, स्वावगीर सब उगड़ आए, ओए जेहा चितवे नित तेहा पाएन, ओए तेहो जेहे दैव जाए, नानक दोही सि

हुकुम ना मनने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिख माया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मुह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप सो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है सो ले जिस सतगुर टिके सो सतगुर जे सच त्याईदा सच सच्चा सतगुर इके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वर्ष के जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर पूड़ फिट फिट मोह फिके ओए बोले किसे न पावनी मोह काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसानी लाया गुरमुख बस जमायन मन मुखी मूल गवाया सबको बीजे अपने पले नो हर पावे सो खेत जमाया गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करते मार कढाया किरसानी जमी पाओ कर हर बोहल बख्स जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत कराया महला चौथा सारा दिन लालच अटिया मन मुख हो रे गल्ला राती ऊंगे दबिया नवे सोत सब टिल्ला मन मुखा दे फिर जोरा अमर है नित देवे पला जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे से अपवित अमेद खला काम व्यापे कसुद नर से जोरा पुछ चला सतगुर के आखे जो चले सो सत पुरख पल पला जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बणत बनावनी नानक पल पला पौड़ी तू वे परवाओ अथाओ है अकुल क्यों तुलिये सेवड पागी जे तुद त्याईंदे जिन सतगुरु मिलिये सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनी है सतगुरु की री सह होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है ओना अंदर होर मुख होर है बिक माया नो चक मर्दे कड़ी है श्लोक महला चौथा सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट विकार झूठ ओए आपे सत्य वख कड्डे जजमाले सत्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार न लबनी कितै खाए पाले जिना सतगुर का आखिया सुखावे नाही तिना मोह पलेरे फिरे दे गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से कितरक वेरायन मनमुख बेताले सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे ओहो आप वरते अपनी वथ नाले जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे इक आपे वख कड्डे ठगवाले महला चौथा जिना अंदर नाम निदान हर तिनके काज दे आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सबको वल सब दर्शन देख करें साबास साहो पात साहो सब हर का किया सब जन को आए करें रह रास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर नेचल नित बख्शे चढ़े सवाया कोई निंदक वड्याई देख न सके सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोल।

तुझ जेवड मैं होर को दिस ना आवई, तू है सुगड़ मेरे मन पाना, मोह कुटंब दिस आमदा, सब चलन हारा आवन जाना, जो बिन सच्चे होरत चित लाएं दे, से पूरे आर कूड़ा तिन माना, नानक सच त्याय तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा, अगो दे सत पाओ ना दिच्चे, पिछो दे आखिया कम ना आवे, अद विच फिरे मन मुख विचारा, गली क्यों सुख पावे, जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे, जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे, ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब कारा अंदेशा परम चुकावे, सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अंदिन हर गुण गावे। महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दोख ले जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदिया उठ दिया हर नाम ते आवे, जो सास दिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक तूर मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी, जो तुद सच त्याय दे, से विरले थोड़े, जो मन चित इक अराध दे, तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े, तुदनो सब त्याय दी, से थाए पए, जो साहेब लोड़े, जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े, ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कड़े मुख खोले, मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा, मल जूई परया नीला काला, खिदोलड़ा तिन वे मुख है नो पाया, पास न दे कोई बहन, जगत में गू पड़ सगवी, मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली, नो वे मुख कर के पेजिया, ओथे भी मुह काला दुआ वे मुखा दा कराया, पढ़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे, पौली पौदी फावा होए के उठ कर आया, अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी पतीजी फिर आन कर पाया, हलत पलत दोवे गए नित पुखा फूके तिहाया, तन तन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बह आप कराया, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो साचे मार पचाया, एहो अखर तिन आखिया, जिन जगत सब उपाया। महला चौथा, साहिब जिसदा नंगा पुखा होवे, जिसदा नफर किथों रज खाए, जे साहिब कह कर वथ होवे, सो नफरे हथ आवे, अनहोंदी किथों पाए, जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए, सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे न कोई। पौड़ी, नानक विचारे संत जन, चार वेद कहन दे, भगत मुखे ते बोल दे, से वचन हो वंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनन दे, सुख ना पायन मुगद नर, संत नाल खान दे, ओए लोचन ओना गुणे नो, ओए अंकार चढ़न दे, ओए विचारे क्या करें, जा पाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म, से किसे ना संदे, वैर करें निर्वैर नाल, धर्म न्याय पचंदे, जो जो संत सरापिया, से फिरे पवंदे, पेड़ मुंडा हूं कटिया, तिस नाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा, अंतर हर गुरु त्याय दा वड़ी वड़ियाई, तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही, इक तिल किसे दी कटाई, सच साहिब सतगुरु के वल है, ता चक चक मरे सब लोकाई, निंदका के मुह काले करे, हर करते आप वदाई, ज्यो ज्यो निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई, जन नानक हर आराध्या, तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा।
था। सतगुर सेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गया। नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया। नित उपाव करे माया तन कारण अगला तन पी उड़ गया। क्या ओ खते क्या ओ खावे जिस अंदर सहसा दुख पया। निर्वैर नाल जे वैर रचाए सब पाप जगते का तिन सिर लया। उस अगे पिछे कोई नाही जिस अंदर निंदा मोह अंब पया। जे सोयने नो ओ हथ पाए ता खेहू सेती रल गया। जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया। जन नानक अंदिन नाम से आया हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू सब दू ऊपर तू दीवान। जो तुद सच त्याय दे सच सेवन सच्चे तेरा मान। ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंज ले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न हो।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आख सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े, तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना, से लैन दे तहा फिराई। तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख न सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुश्त उठाही। हर दिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराधू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड़ी

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी, काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ ओ टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना हो।

चरण तोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए पौड़ी एवं शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत श्लोक महला चौथा सब रस तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे जिन निरपो नाम से आया तिनको पौ कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगे पे नाई है जिन हर उठा मन माहे कोय आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख हम

0: ते जंत भय हरियावले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए पौड़ी। सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेलियुन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर तावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी। हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे, ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया, सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया, जन नानक के गुर सिख पुत्तो, हर जप्यो हर निस्तारिया, महला तीजा, हो मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया विकार, सतगुर मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार, नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार, पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे, जिन्नी एक मन एक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे, तन तन पुरख सावास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे, तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे, श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ आरे, जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे, गुर सिखा अंदर सतगुर वरते, चुन कड्डे लद्दो वारे, ओए अग्गे पिछे बह मोह छुपाए, ना रलनी खोटे आरे, ओना दा पख सो उथे नाही, जाए कूड़ लहन पेडारे, जे साकत नर खवाये, लोचिये बिख कड्डे मुख उगलारे, हर साकत सेती संग न करियो, ओए मारे सिरजन हारे, जिसका यो खेल सोई कर वेखे, जन नानक नाम समारे, महला चौथा, सतगुर पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर्धारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके, जिस वल सिरजन हारिया, सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है, जित काल कंटक मार विडारिया, सतगुरु का रखन हारा हर आप है, सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे। श्लोक महला चौथा। क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिना सास गिरास ना विसरे से पूरे पुरख प्रदान करमी सतगुर पाई है।

फौजल डुबदिया कढ लए हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करें व्यापार वनजार।

बुझाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सालाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सालाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विस्त

बहु रोल कचोला गुरमुख जापे शब्द लिव लाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योतिष पावे सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किछ जानदा जो जी अंदर वरते तू करता आप अगणत है सब जग विच गणते सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनते तू कट कट एक वरतदा।

एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, एहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे।

दुख विहाए सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लय जिस लाए नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी कूड़ कुसत ओह पाप।

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड़े मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान दूजा सेवन नानका से पच पच

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा संभालें मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जानई लाज कुलाज कुबो

हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरख सुने सो

पूरे सतगुरु पावे गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे सतगुर आखे सो कार कमावन सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासो कम कराया लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे गुर सतगुर अगे।

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड्डे। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम व्यापारी।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तो साध चै

मर गए मर भी न सके मूल, वेमुख होए राम ते ज्यो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पनिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंथ न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेक दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए सदा।

बिखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर न

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, साझ पाथ काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौरी कबीर जी नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रे क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

उपजत बिन सत रोवत रहबो रहाओ। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती मह जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना।

तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कर जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ सच तीरथ नहीं मन पति।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ

पंच पनिहारी टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनित जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाते ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मान्या।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

सो सुख हमो न मांगिया पावे, विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

चेतक सिद्ध पै लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प कर तारे जो हर हरे सो होए नाना कह कबीर राम नाम पछाना।

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। रहाओ कौन को पुरख कौन को नारी, या

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै निता नित चीत, माया तपत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज, जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक।

होई। कुशल कुशल करते जग बिन सह कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माय निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्मा

सात दिन से तैन आही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवारा,

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

जोड़न हारो सदा अतीता, ए कही है किस्माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी, काको ठाकुर।

मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दो तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी सिर पई तंती सूटस नाही अनहद किंगरी बाजी।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई।

होए महोए जित कट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ साध मिले सिद्ध पाये के एहो जोग के भोग दो मिले।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमो

उनमत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर।

अंकस थयो शीश। बिखे बाच हर रात समझ मन बौरा रे, निरपय होए न हर पजे मन बौरा रे, गयो न राम जहाज राव, मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो तैसे प्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो तिन ही माए अटक जो उर्जे।

गुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता पौ जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज

पास रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए जो संपै त्यों विकत है बिदने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया।

0: गौड़ी
1: पंथ निहारे कामनी लोचन परी ने उसासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम।

को नंदन नंद सो नंदन काकोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ।

थे तब तुम नाहीं, अब तुम हो हम नाहीं। अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कहता, अब बुद्ध

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्ही माहे, ए अक्षर खिर जाहेंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कच कच पायो पेद, उलट पेद मन बेदियो, पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे ताए न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, तक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे ता

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आ

अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता।

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

निवारे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब ए त्रिये ओकंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना जब ही होए तब है मन माना।

फिरत खपत अज हूं न चेते, अब जग जान जो मना रहे, जह का बिछुरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कह जी जय।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजय विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कभो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई, कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलांबा।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुन।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर।

हर त्या में हर त्या में तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सरान तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें वो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवन अवरण कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुद आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाय तेरी तिलवडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरख।

मानस मूरत नानक नाम, करणे कुत्ता दर फुरमान, गुर प्रसाद जाने मेहमान, ता किस दरगे पावे मान, आसा मेला पहला, जेता शब्द सुरत तुन तेती।

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, हित रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मुंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रया। नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाय तरे खीर मथया, और पखलाए जे असी किया।

मेला है। सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नदर करे विछाया। बीणा शब्द बजावे जोगी, दर्शन रूप अप

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान, रहाओ अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख दे देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विगासे पर

एहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिन कह लागे पाए। आसा मैला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागे तूर। लागी मैल मिटे सचनाए, गुर प्रसाद रहे लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते।

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संयम सत भाओ, नानक बसे

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला तो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ रमनी रवे बंधन नहीं टूटे विच हों मैं परम न जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ताको लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर्धारे भगत वचन जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मने समाए नानक कृपा करे।

ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पद मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रहे निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया आद अपार अपरंपर हीरा लाल रता मेरा मन धीरा कथनी कहे कहे से मुए सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है सब जग देख्या माया छाया नानक गुरमत नाम त्या।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक कर।

अंध जीव रख नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आ गए बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चो।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सत निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे।

जन पंच रासी ता तीर्थ वासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसों आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक तू होर वेश बहु तेरे नानक जाने चोजना तेरे ऐसा मेला पहला एक ना परिया।

कोई नदर करे मेलावा होई राव सरोरडे तन सात पछाणिया सह सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैर।

भूखे कोई जातिस पावे बख्शे सोई वो प्रसादी दुर्मत खोई जह देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सरवरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा ऊपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण केते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड विलायत देश वे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े।

सूत पोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवे नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तीतर पंच गुप्त मन वासे फिर न रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो पंच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो पंच सखी मिल उदन करे हार साहो कजूता कणवत नानक।

खिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बो गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुरा।

जो किछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है एनस्तूर नादन पत विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी सम्या नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं ऐसा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीरा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सदना का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसने सा पुरसा।

नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ता छुपाए नानक नाम वखाने।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के सब सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख कां को लगे नखीर। जम काल किस नीड़ न आवे, नानक गुरमुख सा।

माए सेवड़ पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अगम अगोचरे गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ।

हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाए, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सो घरक दोई समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे तिल न पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा।

है दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंदिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस

अंतर निर्मल अमृत शरणाए सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभ वेखे सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ तै वेखा सोए गुर बिन दाता अवरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए। सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने। जमन मरना है संसार मनमुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा दो कूर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पाना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुरु गोविंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुर ते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदर नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ। जिनको हर प्रभ ले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं ना जाए पूरे सतगुरु दित्ती वडियाई उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किच करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए ना पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसे तहां दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए जिसनो बख्शे साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा नृत्य करे बहु वाजे बजाए यूं मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ दीवा बले ना सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ। गुरमुख नृत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के वचन भगत खाए पाए हर जियो आप वसे मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर स्यों चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए।

सोई गुर प्रसादी मन से हर बूझे सोई मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा से मन से ता सदा सुख होई रहाओ इस युग में निरपो हर नाम है पाइये गुर विचार बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध द्वार हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सालाई है पाने मने सुख होई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सभी आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुख नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पथ तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तरे बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा मेला चौथा।

जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम ही कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण परमा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, गडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा रहाओ, नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा नीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ, हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुठा सिख देवे मेरे भाई, मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम

गुरमत हर गुरु बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्ते तिस आगे हम आदेश राव। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जोवे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब तो मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यागो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख ना लागे आए। आपे हर अपरम पर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार सब सुनाणिया रहा। पूरब लिखे देह से आए माया चलन आज के कल तुरु फुरु।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हो एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

हम हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर बिन रह न जाई। राज शरण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखा।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटम देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप,

हूँ मैं प्रीत, दुखिया त्यागी लोगारीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने, सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार, त्रै सो राती तन सुहागना।

जित ग्रह वसे सो ग्रह सो बावंता, गुरमुख पाई किन विरलै जनता, सो करणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज परथाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ, टिचर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सब पुरुष मनाया, गुर आनी कर में पा सर्व सुख पाया। बत्ती सुलखणी सत संतत पूत, आज्ञाकारी सुगढ़।

इस पूरे मन कंस स्वामी सगल संतों की देर जेठानी सत्तर वारे माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृहो जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख रिहाए।

तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोहे।

पांचों फुनकाल न खाए। करण कारण समर्थ हमारे सुखदाई मेरे हर हर राय। नाम तेरा जप जीवे नानक पोत पोत मेरे संग सहाय। आशा मैला पंजवा हर लावे बिल लावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया। अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे। नाले ले सिदावे अनहोंदा अजगर पार उठाए। निंदक अग्नि माए जलावे परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते। सो नानक आप सुनावे भगत जना को सदा आनंद है। हर कीर्तन गाए बिकसावे। आसा मेला पंजवा जो मैं कियो सगल सिगारा। तो भी मेरा मगना पतियारा।

बस्तर भी पोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेखे पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभु पावा सा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पे दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जाको दृष्ट मया हर राए, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अब सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दिसे तिस सर पर मरना, मुआ होवे किसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्जी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती, जान सत कर।

बिचता अस्त्र परे ते चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वक्त बूझे ता हो वै पाक बिन बूझे तू सदा न पाक कहो नानक गुर को कुर्बान जिससे पाये हर पुरख सुजान आखा महला पंजवा एक तुके चौपदे एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे मन न रह कैसे मिलो प्यारे एक पल दिन को कभू ना बिहावे।

सब अंत ना जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

दूध जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वे साहो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृद अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाले जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जाई रहाओ कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर है।

कर में वस्त बाहर उठ जाता सुनी न जाय सच अमृत का था वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेव बिरानी कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लोक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला जो पावे त्यों कर कृत पाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा तृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ पगत पंडार

पूरा गुर पूरी बनत बनाए नानक भगत मिली वड्याए आसा मैला पंजवा गुर के शब्द बनावो एहो मन गुर का दर्शन संचो अर्थन उत्तम मत मेरे हृदय।

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरु दीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास तई मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे रहाओ महा अगा अगन का सागर गुर बोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

जाए, हर साधु हर समाए, लाख करोड़ी मिले न के, जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाक पहे बिस्माद, नानक गुरते आया साद, ईत ऊत कस छोड़ न जाए, नानक गीदा हर रस माहे, आसा मेला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके गुरमत अपनी धारी,

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे कितने न काम, मिल सौद संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल कर्म के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण करे की रा

बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पय कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा मैला पंजवा।

ठंडी ताती मिट्टी खाए, ओह न बाला बूढ़ा पाए। राव नानक दास साध शरण आए, गुर प्रसाद पाव पार कराए। आसा महला पन्नवा सदा सदा आत्म प्रगास, साध संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांत सदा सुख पावे। किल विख जाए सबे मन तेरे, रहाओ कौ नानक जाके पूरन कर्म। सतगुर पेटे पूरन पार ब्रह्म, दूजे घर के चौथे।

कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज अनंत सुहेली, साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक कई अमोली, आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत्सर।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे राव सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा ते गुरु गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एह सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जहाँ सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अगद करे सास सास समारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

एक दिहाड़े कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंद को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नान

किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत होना ही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आशा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला, दोए ठौर अपने कोए इहा काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा तत जोग ना पछ।

ऐ जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये।

महा कोरते बां पकड़ गुड़ काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला

नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना हो ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भये।

हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पए जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखनारे, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने, आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुटकी, कौन अनग्रो पयोरी, मा मोनी तुदना व्यापे, तेरा आलस कहाँ गयोरी, राव काम क्रोध अहंकार दाखरो, संजम कौन छुट्योरी, सुर नर देव असुर त्रै दुनिया, सगलो पवन लुट्योरी, दावा अग्न बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहोरी, ऐसो समरथ वर्ण न साको, ताकि उपमा जात न कहोरी, काजर कोट में पई न कारी, निर्मल वर्ण बन्योरी, महामंत्र गुर हृदय बस्यो, अचरज नाम सुन्योरी, कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई, इको अहंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर सतवा मैं।

तब आप सिदार सवारन हार रहाओ दूजा आसा मेला पन्नवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली है दूर चुका हो रहा सकी सहेरी धर्म गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे सेज तरी कान कडन ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा बार सूत

तीस आवत है बहुत पिहाला, सगल चरण की इव मन राला, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बार एक दिखाया।

सिर कनक छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाओ, सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन

जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन।

हर संगत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवे सो नाम जपे जो जन सुध पावे रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जप तह दुख डेरा हुक्म गूंजे सोई परवान साथ सब जाता निशान गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया संत नानक मेरे मन सुख पाया आशा मेला पन्नवा जहाँ पठावो तह तह जाई जो तुम दे हो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गोसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगा

सतगुरु का सत शब्द कमाओ, फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो, पर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, हर हर तंत मंत गुरु दीना, इन सुख नानक अन्न।

जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहु न आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला पन्यवास, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो,

के सूत पर होई कट कट अंतर रया सोई ओ पच पर लो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आशा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लभ देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई।

संग चारे जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुका मा झूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनुज रूप सब नैन अलोया आसा महला पंजवा

रहा मूर्ख मुगद अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

इत उत कतैन डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन कह अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

रहाओ मिट गया दुख बिसारी चिंता फल पाया जब सतगुरु मंता सोई सत सत है सोए सिमर सिमर रख कंठ करोए कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पन्यवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता।

निसारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोहिला दी अंकारे दोष नाई प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कम कर नस गए विचारे ऊचित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद कली बनी जाके गृह सब किच है पूर्ण सो पेटिया निरपैतनी रहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न कोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तरी अगम गुस्सा।

नानक नाही तिन कामी। आसा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया तब मेरे मन महा सुख पाया। मिट गई गणत बिना सो संसार, नाम रते जन पै भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत पौ पौ मिट्यो मेरे मीत। जो मैं ओट गई प्रभु तेरी पा पूरन होई मनसा मेरी। देख चलत मन पै दिलासा नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज पुकाई गिरत कूप में खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया के चितवत। कबू न सिमरे सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया नहीं चल ग्रह बांधिया काल के फांस सकत सर सांधिया। बालू किनारा तरंग मुख आया सो थान मूड नहीं चल कर पाया। साध संग जप्यो हर राए नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मैला पंजवा, दो पुके नावा उनके संग तू करती केल। उनके संग हम तुम संग मेल उनके संग तुम सब को लो रहे।

अरे उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तू साख जगत। उनके संग तेरी सब विथाटी, उस बिना तू हुई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए। जोड़ बिछोड़े नाम खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता ना

हमको तृष्णा जाओ निर्मल ता हम जचना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनिक पाठ कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनिक बार जाइए कुर्बान सारी सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आ

उपत होए के राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया। संचत संचत फैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट।

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुरु पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मैला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मिठा माने, एक नाम संकन आधा।

कहाओ लाल जवे हर परे पंडार, कोट ना आवे जप निरंकार, अमृत शब्द पीवे जन कोए, नानक पाकी परम गत होए, आपका कर सतम।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे ना चूरी है, नानक दर्श।

पुरख बिराते बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख ला दे कहो नानक दिन रहम ते आवो मार काडी सगल उपा दे क्यों जपियो पाई पुरख विदाते पयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाते रहाओ दूजा आसा मेला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आक नीम को तूमर जैसा संग बिस्यर स्यों है रे तैसो

ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਨੀ ਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रवरंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किर्म अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विखाटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम कौ नाथ है हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहना। कारण करना कारण करना एक है सोहना। संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना। आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ। संग सहाई छोड़ न जाई ओह अभय अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला। आशा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ। नाम पदार्थ हुए सका।

गुण रस रस गावे। एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा। एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीयन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा मेला पंजवा। हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलसिया। आशा मेला पंजवा। कर चौथा।

जाए। प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके। नानक साध शरण प्रभ संग वसै, आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ ना आवे पकड़ के।

हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया, मान तान तज

पाया मम बहुत प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए, आसा मैला पंजवा।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आशा मैला पंजवा हर्ष शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, हम स्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन पराना रवयो सर्व थाना लहो जम पयाना पायो पेड़ थाना तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सब को तिस मने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हां, परम पद पाये हां, उआ रस जो विदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जा गया हां, नानक बड़ पा गया।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुरु शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाद लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन

सुरत भी पूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुरु विचारा, अंतर

पार कमाई खसम रजाए अवगत नाथ न लख्या जाए। जल में उपजे जल ते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहूने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती।

पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा। जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी। बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए। रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई। सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला। अंतर साथ सबे सुख नाला, नजर करे राखे रखवाला। त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे। शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुझ नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी।

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझै सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पै भगती जन्म विरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

पंच तीन नव चार समावे, तरण गगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख होए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण तोवे।

रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लब लोभ अहंकार सुपीरा, राम नाम दिन क्यों मन तीरा, अंतर नावन साच पछाने, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द

मिले ते जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाओ, ना मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम बसिया।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

ग्रास इकत खाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इव मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस को बक्से नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरु

अवर्ण औषध संत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आस्था महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

से तन जाए बिन हर भगत न कविताए बंधन वेद बाद अंकार बंधन बिन से मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर, महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर।

तिन गल सिलका पाया तुतन मोक्सरिया तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे।

सो कर दर मंडक महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान संगोली।

लड़ाई, रामे तेग वगाई, ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुराणी, इकना पेरण।

जाए रुआये हुक्मी हुक्म चलाए विगसे नानक लिखिया पाये एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ऐसा काफी मेला पहला कर अठवां अस्त।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रोई।

जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत परावो, धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो।

सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुरु बुद्ध। जोगी पोगी कापड़ी क्या पवे दिसंतर, गुर का शब्द ना ची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना, अंतर वस्त न जानी कट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा, आप न चीने तामसी काहे पे उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे, बिन गुर शब्द न छूट ही प्रम आवे जावे। एक गिर ही सेवक साध का गुरमत्ती लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानी है।

जय गुरमुख नाम तियाए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिय हर्षो बनियाई कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर बाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावई।

पाई, कृपा ते सुख पाया साचे पर थाई, गुर बिन किने न पायो केती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे पर माई।

जिस आकर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूरो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी।

साहिब से मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुकुम।

नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइए खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई जिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई औगुण यारे को गुण नानक सच मिले वडाई आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जां तुद पाणिया जो लग जियो प्राण सच दियाई है लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जानसी, वेला सच परवान।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई ले।

पावे सोए, साची बाणी महल प्राप्त होए, गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, हम दिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुरु से

गुरु ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरुमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरुमुख पगत सला है अंतर शब्द अपारा, गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरुमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंधिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम से आए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओ नानो बख्शियन अंतर।

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किछ नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई कर दर छोड़े अपना पर कर चूठा जाई चोरे वांगू पकड़िए बिन नामे चोटा खाई जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए भाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई आसा महला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा गुरमती साला ही है बिखिया माए उदासा रहाओ बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई गुरमती कर चानना नाम अंत सखाई नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा अंतर नाम मुख नाम है।

नामे ही कर चानना, नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे, नामे शरणाई, बिन नामे कोई ना मनिए, मनमुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए, बिरथा जन्म गवाई, नामे की सब सेवा करे, गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए, नामे वड्याई।

सास बराई सुंदरी फिर कहे प्यार सुहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंत।

हाँ हाँ कर दी सब फिरे, बिन शब्द हों न जाए, नानक नाम रते तिन हों मैं गई, सच्चे रहे समाए। हासा मैला तीजा, सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे, आगे जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे, ना यो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए, निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कै पै पाए जोरते, सिफ्ती सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई, ना मन निर्मल होए।

बिन संगति सब ऐसे रहें जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजें और

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए तू बेअंत दयाल।

सत संतोख ए संजमी मन निर्मल सब सुनाए। लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए। गुरते कीमत पाई है सच शब्द।

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिंगार। कर ही सो फिर पाया सच्चे शब्द विचार, अवगण गुणी बखसाया हर स्यो लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवे सहज स्यो सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुन्नी।

सत निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अंग दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक सत्यों लिव लाए, नानक जे सुख लोड़।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए रहाओ। मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे। जिना पिर का स्वाद न आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे। गुरुमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती दे।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आख आयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है

भगता की जत पत एको नाम है, आपे ले सवार सदा शरणाई तिसकी, जो पावे त्यों कार सार।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल

नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है निचल हर को नाओ, कर मित्राई साध चो निचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंग

दर्शन कौ बल जाऊं, जिस सिमरत दुख बीस रह प्यारे सो क्यों तजना जाए। यो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पड़या, रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई, एना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तिस सिर लेख न होई, उड़े उपमाता की जय, जाका अंत न पाए।

पढ़िया पंडित आप थिया छछै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जज्जै जान मंगत जन जाचे लख चौरासी पीक पव्या एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया चज्जै चूर मरो क्या प्राणी जो किछ देना

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पवजल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करे क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दाता।

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसे तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने गुणे वस अवगण नसे तुद बाज एक तिल

जप तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुरु बूझ बुझाइए।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादी है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाणे एहनिस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हों मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई संग न कंपै ना।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत्व विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वडियाई। नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग जीवनो दाता राम। जग जीवन दाता हर मन राता, सहज मिले मिलाया। साध सभा संता की संगत, नदर प्रभु सुख पाया। हर की भगत

कर्म विधाता दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा के रे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया।

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया।

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे हर ऊ

सच कहे नानक चेत रे मन मरे हरणा कालिया। पवरा फूल पवन त्या दुख अत पारी राम मैं गुरु पूछिया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली, हर वर न पाए राम। कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाखिया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा

गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी, हम दिन हर लिवलावे। जै जै मन तू तावदा, तै तै हर तेरे नाले। मन से आणप छोड़िए।

सतगुरु मिलिए दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहा समाए यो कह नानक सतगुरु मिलिए तावत थमिया निज कर वस्याए मन

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाव न होई। मन शांत आई बजी वधाई ता हो आ परवान, क्यों कहे नानक मन तू जो

ऐसा दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडा।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब होआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मन मुख मूर अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूर पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, माँ बिखम जम पंख दुहेला कालू खत मोह अंधियारा, नानक गुरुमुख।

राम मन इकत कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार।

जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपी है सतगुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़ी है गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जप

तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई त्रमचू का आमन जान जियो।

कौन उपाय जियो। कल युग हर किया पग त्रैच किया, पग चौथा चिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया निक आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मन मुख करन।

जियो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सो कर मैं बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्यापे मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जां वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड़ पागी सत्संगत पाई राम वड़ पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई आई

सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा दूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आशा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभु सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानिए हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानिए। प्रभु पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे। पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रव सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये। जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे। कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो। हर प्रीत करी जय इह मन दीजे अकलाये चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ स्नेहा। कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए। कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया। अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है। कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी पह सिवे यो मन लाल दी जय। मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता जिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे। कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन बसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जाको सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूरत आवे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा महला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पे चरण जम पे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम

है सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरण हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नान पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूरन सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतारता कैमद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अंग घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप से आगी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूरन आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपन त्या कछ न कहे जम काल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल संत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न पावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप पावे किसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायो राख नहारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा
पुरख पते भगवान ताकी शरण गही, नेको पै प्राण चिंता सगल लही, मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया, गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया, बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही, प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही, अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिख के दिवस गए, गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे, अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे, गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय, नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रया, कट कट वासी आप विरले किने लया, जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समानिया, आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया, ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रया, दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप तरे, दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया, हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभुआ सब तरे, दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे, आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक, शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत, पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे, राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो, चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही खिनो, तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे, बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे, मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे, मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया, बिन हंस नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया, मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने, गुण गुण गुप्त अपार करते निगम अंत न पावे, भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे, सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पानी, बिन हंस नानक रंग राती प्रेम सहज समानी, सुख सोए लड़े हर गावन लागे साजन सर से अड़े दुख दुश्मन पागे, सुख सहज सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा कारिया, हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे, बिन हंस नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे, आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तैं क्या चिर लाया, मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया,

गाविए है, सास सास सितार जीवा प्रत्येक हर गुण गाविए, बिरहल जाया दर्श पाया अम्यो दृष्ट सिंचंती, बिन वंश नारक मेरी इच्छ पुनी मिले जिस खोजंती। न सुवन जो किल विखो परता कर आया, दूते देन पया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया, अचरज जीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया, मन शांत आई वजी वधाई ने अंत जाई पाया, बिन वंश नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया। नरक न दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय तरम करे दूत पहे पलायन, परम तीरज सह सुखिये साथ संगत हर पजे, पर अनग्रोह राख लीने मोह ममता सब तजे, जय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंश नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण। निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वस जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नाम।

संग देखे करणहारा काय पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते। बलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पद निसंगे कुल समूह आतारी है। सिर साधिक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नानक सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखण हारा, कूड कपट तमाम गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सुनाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ

बिनवंत नानक बद पाग पाये सुख सहज समाही। आसा मैला पंजवा चंकर अठवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रे नाथ नर हर करो गात। मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रे बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रे प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे चितवंत अंगन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी पवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह संत।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राशत मान प्रभ मान पूरन दुख विजीरन सगल इच पुजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आशा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये कर्तना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर्य चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नाम गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलगु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्य आन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतने आओ वड्डी वड्याई जाने चल साओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्मे करे विनाश इकना थाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आखरे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक्त कडे जिजमा लिया थाओ ना पायन कूड़िया मोका ले दो जुकचा लिया तेरे नाय रते से जन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार

पाया हों में कर करजन तो पाया हों में बूझे तांगर सूझे ज्ञान होना कर सतलूझे नाम कुक में लिखिए लेत जी हा वेख है ते आवेख मैला दूजा हों में यहाँ जात है हों में कर...

पे आकर फिराए। हौ में दीर्घ रोग है दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए। पौड़ी सेव की संतोखी जिन्नी सचो सत्य आया, ओनी मंदे पैर न रखियो कर शुक्र कर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बस्ती सी अगला नित देवे चने सवाया। वड्याई वड्डा पाया स्वरूप महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता, दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा, अंडज जेरिज उत्पुजा खानी सेत जहां, सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जंत उपाय कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता, सो करता चिंता करे जिनु पाया जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग, नानक सच्चे नाम बिन क्या किता क्या पग। महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान, लख तप उपर तीर्था सहज योग बेबान, लख सूरतन संग्राम रंग में छुटे प्राण, लख सुरती लग ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया मन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमा।

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परिये साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डिया खात, पड़िए जेते बरस बरस, पड़िए जेते मास, पड़िए जेती आरजा, पड़िए जेते सास, नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला। लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोहवे जी आपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बकर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किछ खाई न पाई, रह बिमानी मरी मसानी, अंग न जाने फिर पछतानी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे सेते ने केवल, हों मैं शब्द जलाए पौड़ी। भगत तेरे मन पाम दे, दर सोहन कीर्त गाम दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताम दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताड़ी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे।

नानक वखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सत्ता पर जानिए जार दैसा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्ता पर जानिए जा फल करे प्यार नाव सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सत्ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो फर्क पाया साध के विच दे करता बियो। सत्ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले गया जाने जी की किछ पुण दान करे। सच

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला प्रपूर रहा। तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा पात्मा

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। परवा हो वह गुनेगार ताऊ मी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है। ऐसी कला न खेड़ी है जित दरगह गया हारी है, पढ़िया अत्यो मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे। सत जुग रथ संतोख का कर्म अगे रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाओ। द्वापर रथ कपे का सत अगे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आठ है साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा परपूर। राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

मैं वेद अथर्वा हुआ, नाव खुदा ही अल हो गया। नील बस्तर ले कपड़े पहरे, तुर्क पठान ही अमल किया। चारे वेद हुए सचियार, पड़े गुणे तीन चार विचार। पाओ भगत कमी सदाए, तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी। सदगुरु विट्टो वारिया, जित मिले खसम समा लिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया।

सोए पौड़ी तिरो फलाने पौन वेग हर रंगी हरम सुवारिया कोठे मंडप मालिया लाल बैठे करपा सारिया चीज करन मन पाम दे हर बुजन ना ही हारिया कर फुरमाइश खाया वेख मेहलत मरण विसारिया जर आई जोगन हारिया। श्लोक महला पहला जे पर सूतक मनी है सब ते सूतक होए गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे ते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए

जे वासुतक कूड अखी सूतक वेखना परक्रिय परतन रूप कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए नारखन सा आदमी बद्दे जम पुर जाए मैला पैला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक।

काटके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों चूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल असर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के पले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही सहतारी है देखें पीता अपना तर्क ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी।

गुरचरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जग उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लावो जित पह बंधन टूटे जन्म मरण दुख फेर कर्म सुख जी जन्म ते छूटे राव माया फास बंद नहीं फारे अरे मन सुन ना लूके आता पद निर्माण ना चीनिया इन विद अभियो न चूके कही न उपजे उपजी जाने पाव अपाव विहूणा उदय अस्त की मन बुध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग ऐसे संत ना मौके पावे डाला सो पेदा गटकावे रहाओ बासन मांझ चरावे।

मेरी सगलिया की हो बहन पान जी जिन्हें बरी तिस केरी हमरो परता बड़ो विवेकी आपके संत कहावे ओ हमारे माथे कायम

लाए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी ते कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताके हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे कोई करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहाओ, काकी माँ पिता को काको, कवन पुरुष की जोई, कट फूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए त्रिया रोवे, हंस के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कह पाई, इस बंदे से जुल्म होता है।

एक तो के संत सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक संजोई। हर का बिलोव ना मन का विचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत तारा। कहो कबीर नगर करे जे मीरा, राम नाम लघु त्रे तीरा। आशा बाती सूखी तेल निकूटा, मंदल ना बाजे नट पे सूता। बुझ गई अगर ना निकसो तुआ, रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ। टूटी पंक न बजे रबाब, फूल बिगारे हो अपना काज।

कचरा का सार हो गनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कछ तप ना कियो 30 वर्ष कछ देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत तें ले गयो मेरी रासत मुग्ध फिरे चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तब रे कर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर खन पायो अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए।

करारा हरखवादना की जय रे मन सुकृत कर कर ली जय रे मन रहाओ कुम्हार एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई सू में तन राशन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मुंड में लागे खिन में करे निवेरा हर जन उत्तम पद सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे

चिरगट फास तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पा।

आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्तरी की माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा जगन नगर एक बूंद न बरखे नाद कहा जो समाना पार ब्रह्म पर

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दस बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आशा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन दशियले गुर प्रसाद जीठी रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या करो भाई जिन साज पछान्या तिन सर्पनी खाई सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा।

बल अबल क्या इसते होई, ए बस्ती का वस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कहे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत स्यों पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट

रानवाती चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपड़े तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कटमू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला पूत पिछेरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंभे सुनो तुम भाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बिलाई तले रे बैसा ऊपर सूला।

रहाया, दस मास माता उधर राख्या, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरव जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया, रहाओ बारिश ते बिरध पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकड़े, तबे काहे रोया। जीवने की आस तरह जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा तन रैनी मन पुनरप कर हाँ, पांचों तत बराती, राम राय स्यों पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पतारा रहाओ, नाभि कमल में बेदी रचले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबड़ पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली नंद गहेली, देवर के बिरह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम विसारो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं देखो, यो दुख कासो कहो रे, रहाओ बाप साव का करे लड़ाई, माया सज मतवारी, बड़े पाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे, मेरी जे बा विष्णु नैन नारायण, हृदय बसे गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कहस मुकंदा, रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कब हूँ न पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं काशीक जुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे कूपत राजे, हर सौ मोर त्याना, आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान, बाबा माया।

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब सुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरी।

आ गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पै राम प्रसादा। आशा रोजा करे मनावे।

तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब

गचनी में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। ते कबीर ही रास देखियो, जग में रह समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। ऐसा पहली करूप कुजात कुलखनी, सहरते ही है बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुना।

रहो रहो री बहुरिया कुंगट जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगट काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट पादे की एह बड़ाई।

मरम ना जाना, सब जग अंत आयो ताना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतना पसरे ताना।

तह कांति मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ ना वे, किस बैकुंठ ना जाना। लोक कतीने कछु न होवे, ना ही राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा रहाओ। जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढुक नावे। जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुन रैन बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुन रैन बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक से

का मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी मत मत काटो जम की फांसी कहाँ करो जाती कह करो।

जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ, सिंगच भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा खासा। पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा ते ना भाव सी, रामा पगते।

काल सास अदद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा

संत आचरण संत चो मार्गे संत चो ओलग ओलगणी और इक मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा मादो सत्संगत सन तुम्हारी हम अवगण तुम उपकारी रहाओ तुम मकतूल सुपेद सपैयल हम बपुरे जस की

चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत।

माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अघाने मुकुट भये। जोत समाए समानी जाके अचली प्रभ पहचानिया तन्ने तन पाया करनी तर मिल जन संत समा।

दी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

जिन मन होर मुख होर से कांडे सचिया रखे इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते कोई पार थिए रहा आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से परवदगार अपार अगम बेअंत को जिना पछाता।

काम से आई है, बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखाली है, जे मन तो वह कोई, झूठ लह जियो मांझी है, मोख पयाना होए। पशु मिले चंगियाईया, खड़ खावे अमृत देहे, नाम विहूने आदमी, त्रिग जीवन कर्म करे ही।

कार्य रहाओ। रव सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा दो लोचन क्या हेर, अंतर ज्योत शब्द सुन जागे।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरह दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविय मना जित सेविय, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित गहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये। जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विच्चों निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहा सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चलदिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहां हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाई।

जाऊं सतगुरु मिले हर मन वसे सहजी रहे समाए रहाओ जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैराग ते हर पाए हर सुन रहे समाए शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

कई ही अंत गए पछताए। अनेक तीरक जे जतन करे ता अंतर की हो मैं कदे न जाए। जिस नर की दुबदा न जाए कर्म राय तिस देश जाए। कर्म हो वै सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक।

सोई गुजरी मैला तीजा। इस जन सांस सदा मत न चले जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरुमुख बूझे हर चरणी चितलाए। हर चेत अचेत मना जो इच्छा सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पावे पीवत रहे सदा सुख होई। रहाओ सब गुरु पेते ता पारस होवे, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो किस

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रहरास राव। हर जन केवट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले कृपा से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याये, सबको दान दे प्रभु ओ है। मेरे भाई जना मोको, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे।

काम सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुख ना

करे। नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे। गुजरी मेला चौथा, हुए दयाल मेरा मन लावो, है अंगन राम नाम नित्याई। सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई। गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई। मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई। नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव डियाई। तन तन सबा सह।

पड़या। शैल पत्थर में जंतु पाए ताकारिज आगे कर तरया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे पास सहरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करया। उदय

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। असठ मज्जन कर स्नाना, ब्रह्म आए थर सारी। अनंत सोच करें दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग आयो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परदासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख न बिसरो।

रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए सियाना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

नवनिध पाई आश्चर्य हर को का खावो खर्चो कोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुम को हर हर सदा पजो जगदीश रहाओ सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत काकड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो वो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

तृष्णा जलन बुझाई, नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, ऐ कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ

नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

सुई बरंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाद कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहे है एको जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रताल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अबे दान सुख पायो।

कहूँ नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार, गुजरी मैला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत, तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श।

मन को इन उपदेश दृढ़ावे, सहज सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कभू जाई राव।

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पई करते की और आस बिदानी लाही।

ओर चुत चुत वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर दिनों करो कर जोर नाम जपे नानक दा।

मल मल तो वह पाए, अब मोहे आए परयो शरणाए, गोज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सतगुर दियो है बताए रहाओ। शुद्ध साधित अर्जत नर नर रही कंठूर जाए।

कपटे अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु के दुख गनिये महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत।

सांस सांस आराध हर हर लह जाए मन की चिंग। मेरे मन जाप प्रभ का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल पाओ राव। साध संग उधार इहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद। अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ। पार ब्रह्म प्रभ दयाकारी बक्सली में आप सर्व सुख हरना।

दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट, हर हर नाम की मन प्रीत, मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव। जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम, कर अनुग्रह आप राखे पै पूरन काम। साथ सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ, गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा तथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण, अटल पदवी नाम सिमरन दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी मैला पंजवा अहंग बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग, हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग। मन तन बांची है जन तूर कोट जन्म के लह पातित, गोविंद लोचा पूर रहाओ। आद अंते मद आशा कुकरी विकराल, गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काती है जमजाल। काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन, प्रभ

निवारे मिले हर जन संत सर्व विद्ध प्रम के पुकारे कत नाई छोट हर चरण शरण अपार प्रभ के।

स्मृति तय परमा निर्मल गुण प्रभु गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ

सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला, सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला। सुन सिखवन

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवन हार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम दिने सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना पद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश आकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार

चुक लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताए बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाए। है जी काल सदा सिर ऊपर।

तोग बिजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मले ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बिन नेफल मेत करी।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। सहजी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अधुआ राई। अनदे मूले नाथ सिर नाथा सतगुरु मेल मिलाई। सहजी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत्संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चुप हितं जप मन नाम हर सर।

चिंतन गुर शब्द हर रमणं मत तत् ज्ञानं कल्याण निधानं हर नाम मन रमणं चल चित्त वित्त ब्रह्मा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिलं मति गुरवाक शब्द रतं परमात परम न चूकई जग जन्म ब्या

पद शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं ते पाए।

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचार है ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी, अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी। मन रे हर कीरत तर तारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

हरण मदमोहो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाय। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा।

अंधा कच नि कच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबत सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे। सतगुर

पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी आन दिन पगति रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी हर हर नाम त्याय है हर

सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जीव सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोये हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुरु स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुरु सो तन सौंपिया।

जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता, उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे, हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर।

केसनो कूड़ बोल के खवा लिया, जे चल दिया नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हौ ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए महला तीजा। एको ने चल नाम तन होर तन आवे जाए, इस तन को तस्कर जोए न सके ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए सेती।

जिना नाम तन खटियाए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाईए नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना।

सुख विचो उतरे सुख वसे मन आई सदा सदा साल आई है हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा जे सतगुरु सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल सांत वसे जप हृदय सदा सुख होए।

हर सुख दाता मन वसै। हों मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता, श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए। सतगुरु पुछे सच संजम कमावे, हों मैं रोग तिस जाए। हर गुण गावे गुण संग्रह है, ज्योति ज्योत मिलाए। इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हों मैं मेट समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विच्चो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार, श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अंदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो, शब्द ना लगो प्यार। सहजे नाम ना त्याया, कित आया संसार। फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर। कूड़े लालच लगिया ना उरवार ना पार। नानक गुरमुख उबरे, जे आप मेले करतार।

भगत सच्चै दर्श होंदे सच्चै शब्द रहाए हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए हर रंग रहे सदा रंग राते रसना हर रस प्याए सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता हर जियो हृदय वसाए बाज गुरु फिरे बिल लांदी दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान भगती खटिया हर उत्तम पद पाया सतगुर सेव हर नाम मन वसाया अंदिन नाम ते आया विचे ग्रहे गुर बचन उदासी हो मैं मोह जलाया आप तरिया कुल जगत तराया तन जने दी माया ऐसा सतगुर सोई पाए जिस तुर मस्तक हर लिख पाया जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले ज्यों देख दीपक पतंग पचाया पंडित पुल पुल माया वेखे दिखा किने क्यों आन चढ़ाया दूजे पाए पड़े नित बिखिया नामो दै खुआया जोगी जंगम सन्यासी पुले ओना अंकार बहु गर्भ वधाया छादन भोजन ना ले ही सत पिखिया मन हठ जन्म गवाया एतड़िया विच्चों सो जन समदा जिन गुरमुख नाम ते आया जन नानक किसनो आख सुनाई है जा कर दे सब कराया। पौड़ी। माया मोह प्रेत है काम क्रोध अंकारा ए जम की सिरकार है एना ऊपर जम का दंड करारा मन मुख जम मग पाईन जिन दूजा पाओ प्यारा जम पुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले।

पे रसभोगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आये लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाएदा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाह वाह करें सही जन सोने तिन को प्रजा पूजने आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गर पीतर कूड कुसत अभिमानी परम पूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी। उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी। हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यों लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिब लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी, हर कै पाणे गुरु मिले सेवा भगत बनी जाय, हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय, हर कै पाणे सुख पाई हर लाहा नित ली जाय, हर कै तख्त बहालिए।

आए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न

अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु स्यों चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच्चे सबल समा।

तार, टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, ऐथे सुख वडियाईया दरगे मोख द्वार, पैते निरपो पाये मिल ज्योति ज्योत अपार, नानक खसमे पावे सा पली जिसनो आपे बख्शे करतार। महला तीजा, सदा सदा सालाही है सच्चे को बल जाओ, नानक एक छोर दूजे लगे साजे वा जल जाओ, पौड़ी अंसा

प्रगटैया तिथै शोक विजोग ना व्यापै अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आपरवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी किस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाव सदा त्याया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुर नाओ सतगुर से तीरतया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साथ जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किच तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हौ तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर मह पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर बिशन अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को करम तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई।

जब त्या पहुँच न सके कोई तेरी टेक जन। गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन। गुर पै सिफ्त पंडार कर्मी पाये। सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना पाये। रखे आप दयाल कर दासा अपने। हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवा।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिया मैल सात संग उठिया जन्म मरण पौ कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जहां आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही कौसे सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोले त्या हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत ना छिजई। पौड़ी आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनु आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप
आपे लयन छाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल थल मही अल सोए नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोए पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ओ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अंदिन बिलपते ज्यो सुंजै कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत न विसरै नानक रवि है नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़ी है फौज पानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी औ दूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़ी है त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा। किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटिया पूरी हो वै जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यो जोड़िया नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ महारोग विकराल तिने बिदारुओ पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया महिमा कही न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्यम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंच त्यांदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो पगता मन बुठा सच समाहरा तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा पैनंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना अंतर बाहर इक नैन अलोवना जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मोआ रलंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आप जुगादी आप रखन वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊना कही ना होए कट्टे कट सारिया
मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किस आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुरु दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे, सब किच करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जमे नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अनदिन बिलपते ज्यों सुनजे कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर।

मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है। फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महा प्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत ते लक के कप ज्यो।

मुसमुसरो है कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लेओ मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सत

मले ना लाछे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कहे किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बछरे थनो बिटारियो फूल पवर जल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा बिख अमृत बसे इक संगा तूप दीप नई बेदे बासा कैसे पूज करें तेरी दासा तन मन अर

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी।

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरुष मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जग चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं वद अमृत तत्मयं नादनोत जसमरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

सुंदर कहो मिले कित गली, हर को संत बताओ मार्गी, हम पीछे लाज चली रहो, प्रिय के बचन सुखाने ही रे, इर चाल बनी है पली, लतरी मदरी ठाकुर पाई, ओ सुंदर हर खुल मिली।

बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा साब गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही पूर्यारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर कूत जमत है किस नाम परयो है प्रकटी रहाओ। जिनका हृदय नाहे हर स्वामी तिन बिगड़ रूप बेरखती। जो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगे है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाइए प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याय रहाओ अंतर एको बाहर एको सब में एक समाय। घट अब घट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के तेरा अंक ना कतु पाई है। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है। रात रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो। कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब हूँ मैं परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साध सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर तेर तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाहे ना का बोल करत। निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता।

तेरे पूरे मनोरथ साध संग तज लभूं देव गुणारी मन जो अपने प्रभावो नीचो नीच नीच अपनाना होए गरीब बुलावो रहाओ अंत अदंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने तामे शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंगारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पायो चिंता

सगल सियानत रही कर्म करान हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ आप नेक पे शरणाई इन मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी रही खिन मैं खाप थापन हारे कुदरत की मना कही देव नारी महिला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहाओ संत तुम्हारे तुम्हारे प्रीतम तिनको काल न खाते रंग तुम्हारे लाल कहे हैं राम नाम रसमाते महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते सोत जागो हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते देव गंधारी पंजवा सो प्रभु जत पत पेक्षो नैनी सुखदाई जीवन को दाता अमृत जाकी बैनी रहाओ अज्ञान अंधेरा संति काटिया जीव दान गुर देनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी करम करम किस उपज ना आयो नह उपजी निर्मल करनी छाड़ सियानक संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंधारी महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहाओ खोजत खोजत खोज बिचारे हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एहो निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम विसाहा देव नारी महला पंजवा मन कह अहंकार अफारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा कर कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंडारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरते आए गाए गुरु गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी नमो।

नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उधारो देव गंधारी महला पंजवा। प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान तार दिल रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाथ प्राण पत पूरन पवजल उदरन हारा आज वाद

देवदारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देवगनारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पै कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार।

मीता ऐसे हर जियो पाए, चोर न जाए सब ही संगे, अंदिन गुर मिल गाए रहाओ, मिलियो मनोहर सर्व सुखैना, त्याग न कठू जाए, अनक अनक पांत बहु पेखे, प्रिय रोम ना समसर लाए, मंगर पाग सो

कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल विसारे। देव नदारी महला पंजवा। हर जप सेवक पार उतारे हो, दीन दयाल पे प्रभ अपने, बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारे हो। प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया,

आओ बहु व्यंत अत बड़ो बाहरो खाहा नहीं अगहू चा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंखा अनेक तपंखा बिन गुर नहीं।

पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव। गंधारी महला पंजवां।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर को गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो।

महला पंजवा जानी ना जाई ताकी गात रहाओ कह के थारो हों कर कतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध असाधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाय करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जापा अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साथ संग न

सारे मात पिता पाई सुत बंदत अर सुन गृह किनार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेर को प्रेत पुकार आज धरी को नाथ करते देख निकार मृग कृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार

चीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख गए हारे नीत नानक पौजल पार पर जो

बहु बंदे परिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपि पचहारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह तांको विवहारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तले बहुरंगी सब तेरे न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म तज नानक प्राणी चरण ताहि चितलायो। राग बिहागरा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदगी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

कोई हर सब आन मिलावे राम। हाँ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी, मन सिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हाँ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल

हर अमृत दिख ले जाए राम मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़ी हर हर नाम ते आए राम हर साज वडे लिख पाया मेरी जिंदड़ी जन नानक नाम समाए राम हर चेती मन भेदिया मेरी जिंदड़ी जो बालक लग दुध खीरे राम हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी जो चात्रिक जल बिन तेरे राम सतगुर सने जाए पाओ मेरी जिंदड़ी गुण दसे हर प्रभ तेरे राम जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी कर वाजे शब्द कनेरे राम मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिख बांधे हो मैं जाले राम ज्यों पंखी

गुर सतगुर वीस लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जब हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुरमस्तक हर प्रव लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चो

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ आया मेरी जिंदड़ी ए, बिक औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम, नाम तुहार जब

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम।

बिहागड़ा महला चौथा जे हर हर नाम ना चेते हो मेरी जिंदगी ते मनमुख मूड आने राम जो मोहे माया।

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

वड पागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए, नानक हर गुण गाए राम। थान थान पर रव रहा मेरी जिंदड़िए, पार ब्रह्म प्रभ का राम, ता का अंत ना पाए।

मन तन तन सब प्रभु केरा क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभु अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके तिस गुरु नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजे हा देह जिस खोजत हम फिरे वे लाल जियो हर पायड़ा कर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस में रहा समाए राम सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कन कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल।

जिन विदाता पाया नाम राते जीव दाते नित दिन चढ़े सवाया ऋद सिद्ध नव निध।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए, अरत तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत।

महामोहन जिन नाम हर के सुख नहीं सहस सियानक उपाव साके जह पावत तह जाहि आद अंते मद पूरन सर्वत्र कट कट।

मन पर तीक न आया सहज न लगो पाओ शब्द साद न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए महला तीजा अपना आप न पछाने मूड़ा अवरा आप दुखाए मुंडे दी खसलत ना गया अंगे विचड़ चोटा खाए सतगुर के पै पन ना करियो रहे अंक समाए। अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

कहे कथे न पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्म किन न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार बिख माया

पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारज तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे

पौड़ी। आपे अस्था तीर्थ करता आप करे स्नान, आपे संजम वर्ते स्वामी आप जपाहे नाम, आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान, जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान, जिस दी तेज

नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए शब्द सो चित ना लावई, जित सुख वसे मन आए, तामस लगा।

छौड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू इह लाए हो, सतगुर का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अग्गे हर्षों केल करे हो। पौड़ी आपे पार अठारह बनस्पत आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परया आया मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा वणजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसे नो सालायो संतो जिन दूजे पाव

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे

पौड़ी आपे सब कट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग छत्ती गुबार कर वर्त्या सुनाहर ओथे वेद पुराण न सास्ता आपे हर नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दू ही बाहर अपनी

तुर खसमे का हुक्म पाया वी सतगुर चेते आना जाए सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरखा जाए जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाल सियाना आपे मोनी वर्तदा आपे

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा साहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो सब पदार्थ पा।

जिन्हों गुरुमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसे तेथी जोग न होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार आपे सूखम।

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खड़िया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए, गुणवंती नित गुण।

गुरुमुख जात पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप बढ़ाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करने

हे मन नाम निदान तू पाए अपने गुर की मन लै रजाए रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसे मन आए कर में पूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुआर नानक सेवड़ पागी जिन हर नाम से

का मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहा, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोए, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझे आ जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसया मन आए, सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभु सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभु

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सत सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का

कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले।

रहाओ लाख भगत जाको आराधे लाख पति सर तप ही साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्ते जाने तोरा है कोई साजन पर्दा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडहंस महला पंजवा तन सोवेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजाने सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अवनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वडहंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को सब

तिने तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओत तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता वढ़ंस महला पंजवा।

जल थल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे शरण परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हों सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजा।

साल। मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे, ये तो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे। मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे तो भोजन मैं नीरे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता, ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता। हौ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई।

सब सिंगार बनाया अमाली, बिन फिर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सो रहा समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली, तिचर मैं जानिया।

सच शब्द विचारा अन दिन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ दासन दासा हुए।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब कोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाए गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाए अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे।

अधिकाई काम क्रोध नित्य संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमती आपे आप पछाने ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साथी वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंब है जग में खट्याए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले दिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

नाता सो प्रमाण सच कमाइए। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए। जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नदर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे। किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय है आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवा।

राजो ता तेरा सदा नहीं चल, एहो कभू ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जो ए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हों बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करे स्वामी तेरे द्वारे। जपे ता साचा एक मुरारे, साचा मुरारे ताम जापे। जाम मन वसावे, परमो पुलावा तुझे।

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हों आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस कुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड़ पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वधंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसें कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए

मन मेरिया अंतर तेरे निदान है, बाहर वक्त ना पाल, जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई, मन मुख अंधले ज्ञान में होने दूजे पाए खुआई। बिन नामे को छूटे नाही सब बाजी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त न पाल। मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वा पारा, सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा, अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा। नामे नौ निध पाई मन मुख माया मोह व्यापे, दुख संतापे दूजे पत गवाई। हौ मैं मार सच शब्द समाणे सच रते अधिकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वडपागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत।

पथ कोई पढ़ पढ़ पंडित वाज बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन।

अतमोल अफारा राम, अतमोल अफारा सचवा पारा, सचवा पार लगे वडपागी, अंतर बाहर पगती राते, सच नाम लिवलागी, नदर करे सोई सच पाए, गुर के शब्द विचारा, नानक नाम रते तिन ही सुख पाया, सच है केवा पारा। हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम, गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम, रसना हर रस पी जय अंतर पी जय, सात शब्द विचारी अंतर फूटा अमृत परिया, शब्दे काड पिए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवि जय, नानक नाम रते से निर्मल, होर हौं मैं मैल परी जय। पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया केवा पारा राम, माया केवा पारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख्यों लागा, बिष्टा माय समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मुए गावारा। माया मोह मन रंगिया मोहे सुध न काई राम, गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा, गुरमुख होवे सोई बूजे सच सवारण हारा, आपे मेले सो हर मिले होर।

माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। एह जगत जलता देख के, पज पे हर सरनाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया। कर मैं निज कर पाया, सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम से आया। जिस कारण हो तू टूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृश्य हर एक हो जाता हर आत्म राम पछाणी। हों गुरबिन खरी।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी दुर्सिख ली त्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे, अवर न करना जाए। बहुत स्याणप लया न जाए, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई। हर आपे पुरुष निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर भी

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदाता।

जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोग तय शरीरा। आन दिन सहज समाध हर लागी, हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन आया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर, कृपा लेहो उबारे राम। हर तारो कृपा कर।

विखंपयंगा अनुतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरुमुख जीतिया अकरो करावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु वखाणी हर रंगी तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापे सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे।

हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सुख लियो किया करते, हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभु, हर भगत।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन त्याया जन्ना।

सो प्रभ पाया कथे न जाया सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना प्रभु हर तन सहज जीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता कहो पाना ता कृत अघाए राम।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सद कुरबान श्लोक।

आख अघाने हर हर अमृत मीठा राम, हर मने मीठा प्रभु तू था अम्यो उठा सुख पाए, दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय। मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा, कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया, नानक जाने सत साईं संत ना बाहरा। संत मिल

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बौर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम। मन इच्छ पाये प्रभ त्याये मिटे जम के त्रासा। गोविंद गाया साथ संगाया कई पूर्ण आशा। तज मान मोह विकार सगले प्रभु के मन पाये। दिनवंत नानक दिन श्रेणी सदा हर हर त्याये। दरवाजे अनहतवाजे राम कट कट हर गोविंद गाजे राम। गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा। गुण के अंत किस कह न जाई कोई न सके पहुंचा। आप उपाय आप

तेवड हंस है सच नाम उधार सत संग्रह है सत सत रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल न लग गई नदर की करतार नानक हों।